0: कार्यक्रम के अंत में लीजिए, सुनिए दीपक यादव से हर बोला।
1: हे हर गंगा हर गोपाल हर के बचन सुना दो।

दीपक यादव के गाए इस हरबोला के साथ ही बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त होता है। इसमें इनके साथ ढोलक पर थे दीपक कुशवाहा और बैंजू पर जब्बार खान। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम एक ही संगीतकार, इसमें आज हमारे संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया। श्रोता, भारतीय संगीत उद्योग में हिमेश रेशमिया एक ऐसा नाम है जिन्होंने संगीत निर्देशन, गायन, अभिनय और टेलीविजन की दुनिया में अपनी एक बेहद विशिष्ट और अभूतपूर्व पहचान बनाई है। मध्य 2000 का दशक उनकी पूरी तरह से उनके नाम रहा, जहां उनके गानों ने एक नए सांस्कृतिक और म्यूजिकल ट्रेंड को जन्म दिया। उनके जीवन और कैरियर की विस्तृत जानकारी ऐसी है कि उनका जन्म 23 जुलाई 1973 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से डूंगर गुजरात से ताल्लुक रखता है। उनके पिता विपिन रेशमिया एक जाने माने गुजराती संगीतकार थे जिन्होंने आरडी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गजों के साथ काम किया था। हिमेश के बड़े भाई का कम उम्र में ही निधन हो गया था, जिसके बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में हिमेश ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए संगीत को ही अपना कैरियर बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई के प्रसिद्ध हिल ग्रेंज स्कूल से पूरी की। आइए सुनते हैं उनका संगीतबद्ध पहला गीत, जो है फिल्म वादा से बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाज में, और इसे लिखा है समीर ने।

0: 90.
1: श्रोताओ, हिमेश रेशमिया ने अपने करियर की शुरुआत बेहद कम उम्र, लगभग 16-17 वर्ष में एक टीवी निर्माता के रूप में की थी, जो उन्होंने जी टीवी

और दूरदर्शन के लिए अंदाज, अमर प्रेम, आशिकी और जान जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों का निर्माण किया और उनके टाइटल ट्रैक को भी कंपोज किया। हिमेश के पिता एक समय अभिनेता सलमान खान के साथ एक फिल्म बनाने वाले थे जो किसी कारणवश नहीं बन पाई, लेकिन उस दौरान सलमान ने हिमेश की एक धुन सुनी और उससे प्रभावित होकर भविष्य में मौका देने का वादा किया। सलमान खान ने अपना वादा निभाया और फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, जो कि 1998 की फिल्म थी, इसमें हिमेश को बतौर संगीतकार ब्रेक दिया। इस फिल्म में उनके कंपोज किए दो गाने प्यार किया तो डरना क्या और तुम पर हम हैं अटके जबरदस्त हिट रहे। इसके बाद उन्होंने बंधन और हेलो ब्रदर जैसी फिल्मों में सह संगीतकार के रूप में काम किया। बतौर सोलो यानी एकमात्र संगीतकार उनकी पहली फिल्म सलमान खान की दुल्हन हम ले जाएंगे सन 2000 थी। आइए सुनते हैं हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध अगला गीत फिल्म यकीन से, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अब्बास मस्तान की फिल्म हमराज, जो कि थ्रिलर फिल्म थी और 2002 में आई थी, इसके संगीत के लिए हिमेश को पहली बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का नामांकन मिला। 2003 की फिल्म तेरे नाम, जो सलमान खान स्टारर थी, इस फिल्म का संगीत हिमेश के कैरियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस एल्बम के सेमी क्लासिक और भावुक गानों ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और उन्हें उद्योग में शीर्ष पर स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने एतराज, मैंने प्यार क्यों किया, आशिक बनाया आपने और अक्सर जैसी कई फिल्मों में सुपरहिट संगीत दिया। वर्ष 2005 में हिमेश रेशमिया ने संगीत निर्देशन के साथ खुद प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की, जिसने भारतीय संगीत परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। हिमेश की आवाज में एक अनूठा नेजल यानी नाक से गाने का अंदाज था, जिसे शुरुआत में आलोचना का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जनता के बीच ये एक कल्ट कंट्रीब्यूशन बन गया। उनकी सूफी पॉप शैली, कैप यानी टोपी पहनने का अंदाज और ट्रेंडी माइक पकड़ने की शैली युवाओं के बीच एक बड़ा क्रेज बन गई। आइए सुनते हैं उनका संगीतबद्ध अगला गीत, जो है फिल्म तुमसे। अदनान सामी की आवाज है, समीर का गीत है।

0: Akashwadi at 90.
1: सन 2000 की फिल्म आशिक बनाया आपने, इसके टाइटल ट्रैक से उन्होंने बतौर प्लेबैक सिंगर डेब्यू किया। ये गाना इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर रहा कि हिमेश फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीतने वाली पहली संगीत निर्देशक बन गए। 2006 का पॉप एल्बम आपका सरूर, ये भारतीय संगीत इतिहास के सबसे सफल और सबसे ज्यादा बिकने वाले गैर फिल्मी एल्बमों में से एक है। इसके गाने जैसे तेरा सुरू, नाम है तेरा और झलक दिखला जा उस दौर में हर रेडियो और टेलीविजन चैनल पर छाए रहे। अपनी गायकी की अभूतपूर्व सफलता के बाद हिमेश ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और बतौर मुख्य अभिनेता उनकी पहली फिल्म आपका सुरू सन 2007 में बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से बेहद सफल रही। इसके बाद उन्होंने 2008 में फर्ज, 2009 में रेडियो, 2012 में खिलाड़ी 786 और 2014 में द एक्सपोज जैसी फिल्मों में अभिनय और संगीत दोनों दिया। उन्होंने अपना खुद का स्वतंत्र म्यूजिक लेबल HR म्यूजिक लिमिटेड शुरू किया, जिसके तहत वे आज भी लगातार नए सिंगल्स, एल्बम और नए कलाकारों को लॉन्च करते रहते हैं। आइए सुनते हैं उनका संगीतबद्ध अगला गीत फिल्म हमराज से उदित नारायण की आवाज में।

0: जिंदगी बदल दी।
1: हिमेश रेशमिया ने सारे गामा पे चैलेंज, द वॉइस इंडिया, सुपरस्टार सिंगर और इंडियन आइडल जैसे कई सीजन बतौर मुख्य जज संभाले हैं। जजिंग के दौरान उनके वन लाइनर्स जैसे जय माता दी, तंदूरी नाइट्स और प्रतियोगियों के प्रति उनका उत्साही रवैया हमेशा चर्चा में रहता है। उन्होंने सोशल मीडिया और रियलिटी शो के माध्यम से कई जमीनी हुनरों जैसे रानू मंडल को बॉलीवुड की में मुख्य धारा का ब्रेक भी दिया। हिमेश रेशमिया ने 21 वर्ष की उम्र में कोमल से शादी की थी, जिनसे उनका एक बेटा स्वयं है। 22 साल के इस रिश्ते के बाद 2017 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। इसके बाद मई 2018 में हिमेश ने टीवी अभिनेत्री सोनिया कपूर से शादी की। सितंबर 2024 में उनके मार्गदर्शक और पिता विपिन रेशमिया का निधन हो गया, जो उनके जीवन की एक बड़ी व्यक्तिगत क्षति थी। हिमेश रेशमिया ने क्लासिकल, सूफी पॉप, डिस्को और रॉक जैसे विभिन्न जॉनर में 1300 से अधिक गानों को संगीतबद्ध किया है। वो आज भी भारतीय संगीत उद्योग में समान रूप से सक्रिय और प्रासंगिक बने हुए हैं। उनके संगीत निर्देशन का ये गीत सुनते हैं जो कार्यक्रम का अंतिम गीत है। फिल्म है अक्सर, आवाज के और सुनिधि चौहान की, और गीत लिखा है समीर ने।

0: इसी के साथ ही एक ही संगीतकार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसमें आज आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया के संगीतबद्ध कुछ फिल्मी गीत। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को है। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी से प्रस्तुत है भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। भोपाल में इन दिनों गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। दोपहर में सड़कों और बाजारों में सन्नाटा नजर आ रहा है। कल शहर का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को धूप और लू से बचने की सलाह दी है। एमवीएम कॉलेज में एनसीसी के पूर्व कैडेट्स का चौथा एलिमनी फंक्शन आयोजित किया गया, जिसमें 1975 से अब तक के पूर्व कैडेट्स और नेवी ऑफिसर्स शामिल हुए। अब एमपी लॉकर एप्लीकेशन के जरिए लोगों को नगरीय सेवाएं भी मोबाइल पर मिलेंगी। इसमें संपत्ति कर, जल कर और लाइसेंस समेत 22 से ज्यादा दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। उन्होंने लोगों से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की। भोपाल से छोड़ा गया एक दुर्लभ सिनेरियस गिद्ध 24 दिनों में करीब 3000 किलोमीटर उड़कर उज्बेकिस्तान पहुंच गया है। इस दौरान उसने राजस्थान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सफर तय किया। वन विभाग ने उसकी पूरी यात्रा पर नजर रखी है। गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर में जूस और लस्सी की दुकानों पर भीड़ बढ़ रही है। मिलावट की शिकायतों

खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई दुकानों पर छापेमारी की है। रानी कमलापति स्टेशन के पास बंसल वन बिल्डिंग में एनएसजी ने हाई इंटेंसिटी मॉक ड्रिल का आयोजन बीते दिनों किया। आतंकियों से बंधक छुड़ाने और सुरक्षा एजेंसियों के तालमेल का अभ्यास इस मौके पर किया गया। मानसून से पहले डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर शहर में बीते दिनों रैली, नुक्कड़ नाटक और जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को बचाव के उपाय बताए गए। रविन्द्र भवन में आयोजित नर्मदा चिंतन संगोष्ठी में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान समर्थ दृष्टि साधना के शिखर पुस्तक का विमोचन किया गया और सामाजिक क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया गया। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए 3 समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन से होकर गुजरेंगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। भोपाल में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी में पेट्रोल 109.70 रूपये और डीजल 95.04 रूपये प्रति लीटर बिक रहा है। भोपाल और इंदौर का मेट्रोपॉलिटन एरिया अब 28,000 वर्ग किलोमीटर तक विकसित किया जाएगा, जिसमें कई जिलों की तहसीलें और हजारों गांव शामिल होंगे। प्रदेश सरकार ने ओबीसी युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में बीते दिनों चयनित युवाओं को प्रशिक्षण किट का वितरण किया गया। आईपीएस शैलेंद्र सिंह चौहान ने भोपाल में डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि शहर की शांति और सुरक्षा बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। भोपाल में किरायेदारों, पीजी में रहने वालों और होटल लॉज में ठहरने वालों की जानकारी पुलिस को देना अब जरूरी होगा। पुलिस प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। बीते दिनों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनीष शर्मा ने जयप्रकाश जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित मिले डॉक्टरों को नोटिस भी जारी किए गए। भोपाल के पास बेतवा नदी के सूखे उद्गम स्थल को पुनर्जीवित करने के अभियान के दौरान एक प्राचीन जल स्रोत मिला है, जिसे पार्वती कुंड नाम दिया गया है। सफाई के बाद इसमें फिर से पानी निकलने लगा। जनगणना 2027 के तहत भोपाल में अब तक 3,60,000 से ज्यादा मकानों की गणना पूरी हो चुकी है। बेहतर काम करने वाले प्रगणकों को सम्मानित भी किया गया। बारिश के मौसम में सफाई मित्रों की सुरक्षा के लिए नगर निगम ने उन्हें रेन किट वितरित करना शुरू किया है। पहले चरण में 105 सफाई मित्रों को किट प्रदान की गई। रविन्द्र भवन में बीते दिनों आयोजित KF रुस्तम जी पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 101 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। भोपाल जिला न्यायालय में बीते दिनों राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली बिल, जलकर और संपत्ति कर के मामलों में राहत दी गई और कई विवाद आपसी सहमति से निपटाए गए। बीते दिनों तुलसीनगर स्थित नगर निगम के नए अटल भवन का मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उद्घाटन किया। 43 करोड़ रूपये की लागत से बने इस भवन में अब नगर निगम के सभी दफ्तर एक ही जगह काम करेंगे। भोपाल से पहली बार बीते दिनों सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा रवाना हुई। मुख्यमंत्री ने रानी कमलापति स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा में 1100 श्रद्धालु शामिल हुए। प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 62 आईपीएस अधिकारियों के तबादले बीते दिनों किए। नई जिम्मेदारियां एडीजी से लेकर डीसीपी स्तर तक के अधिकारियों को सौंपी गयी। भोपाल के कुशभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर के इंजीनियर, वैज्ञानिक और उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए। और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम बीते दिनों घोषित किए गए, जिसके तहत 12वीं में 76% और 10वीं में 73% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस बार भी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेरिट में बाजी मारी। भोपाल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। प्रातः के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर।

हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है मिश्रित संगीत का कार्यक्रम सबरंग। आरंभ करते हैं पुष्पा पागधरे के गाए इस भजन के साथ, जिसे लिखा है चंद्रशेखर पांडेय ने।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: कार्यक्रम में आगे सुनिए अंबर कुमार से ये गजल, कलाम कृष्ण अदीब का है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मिश्रित संगीत के कार्यक्रम सबरंग के अंत में लीजिए सुनिए एक फिल्मी गीत। फिल्म है यादों की बारात, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। गीत लिखा है मजरू ने और संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फिल्म संगीत जो आप सुन रहे थे, ये था कार्यक्रम सबरंग के अंतर्गत, जो कि मिश्रित संगीत का कार्यक्रम है। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: प्रस्तुत है आपके पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम का पहला गीत है उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, फिल्म है मैं ऐसा ही हूं। गीत समीर ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने। पसंद आप सभी की है। ग्रामवा पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, श्रीमती नंदा बोटके, हनुमान बोटके। अंबेडकर चौक वाकोडी से उत्तम जामदाड़े और स्वराज जमदाड़े। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल। राम ग्राम उपरेखा तहसील सरीला जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से बलवान और अनूप कुमार राजपूत। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। उत्तम नगर दिल्ली से कमरा रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म मैं ऐसा ही हूं का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।
1: ये क्या है?
2: ये टैटू है।

0: 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं जाना फिल्म का गीत सोनू निगम की आवाज में, गीत शाहरुख सुल्तान का और संगीत आनंद मिलिंद का, पसंद आप सभी की। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। चंद्रनगर सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। गांव खिरिया ठाणी, जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ पर भणी, महाराष्ट्र से रूपेश सिंघई, महेश सिंघई, प्रज्ञेश सिंघई, प्रीतेश सिंघई और उनका पूरा सिंघई परिवार। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। फाजिल का पंजाब खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शाली खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा और आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक समेत उनका समस्त खेड़ा परिवार। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। आइए सुनते कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी की पसंद पर, फिल्म जाना से।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म हनीमून से अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का और संगीत अनु मलिक का। पसंद है आप सभी की। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा और दानिश अंसारी। गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। राजपैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म है हनीमून।

कार्यक्रम का अंतिम गीत है फिल्म मदहोशी से उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में, गीत शकील आजमी का और संगीत रूप कुमार राठौर का। पसंद आप सभी के। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब रामचबूतरा कालपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुनिशा, शाबिश्ता मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, फिल्म है मदहोशी, आवाजें उठना रहे हो।

0: श्रोताओं कार्यक्रम के बीच में आए व्यवधान के लिए हमें खेद है। इसके साथ आपकी पसंद कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने मित्र समीर गोस्वामी को। आपका दिन शुभ हो। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 11 बजने को है। अगले कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया हमारे अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी में जागृति शर्मा। केरलम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली नई यूडीएफ सरकार ने आज तिरुवनंतपुरम में शपथ ली।
2: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और IUML नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। तिरुवनंतपुरम में 21 सदस्यीय सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जारी है। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे

0: चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। श्री मोदी की ये नॉर्वे की पहली यात्रा है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को गहरा करना, रक्षा औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत करना, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज सुबह एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब ट्रक की टक्कर सामने से आ रही वैन से हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य सहित 10 पदक जीते हैं। जियांगशान में 6ठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। तेल की बढ़ती कीमतों में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद वैश्विक बाजार के कमजोर रुझानों के चलते घरेलू शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. In Keralam, the new UDF ministry headed by senior Congress leader V.D. Satheeshan was sworn in today at Thiruvananthapuram. Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath to the new ministers, former opposition leader and former KPCC President Ramesh Chinnathala, present KPCC President Sonny Joseph, former KPCC President K. Muralidharan and IUML leader P.K. Kunhalikutty are among the senior leaders in the new ministry. Swearing-in ceremony of the 21-member ministry is continuing at Thiruvananthapuram. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded India-EU FTA for the benefit of their people. Prime Minister Modi has invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission. During an interaction with select Swedish CEOs in Gothenburg, Mr. Modi mentioned about strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next-generation infrastructure development in India.
2: Vodafone, Ericsson, Nokia, ओरांज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजिशन, AI एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है।

0: In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third Indian-Nordic summit and bilateral engagements. This will be the first visit of Prime Minister Modi to Norway and the first prime ministerial visit from India to Norway in 43 years. In Uttar Pradesh, 9 people were killed in a road accident in Lakhimpur Khiri district this morning. A speeding truck collided head-on with a magic vehicle coming from the opposite direction. The accident took place near Adlispur village on the Pilibhit Basti highway, 40 km from the district headquarters. Police reached the spot and shifted one in
1: Jatav, Jila Shepri, Madhya Pradesh.
2: Harilal Jatav. Kya naam bataya aapne?
1: हरदयाल जाटव
2: जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे 4-5 दिन पहले ही बात हुई है।
1: नहीं नहीं मैडम जी, मैंने 1 तारीख को बात की थी।
2: अच्छा, 1 तारीख को बात की थी, चलिए।
1: हाँ, शनिवार को भी, आज 17 तारीख है ना।
2: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं। और क्या हाल है आपके?
1: बस बढ़िया है मैडम जी, गर्मी के बुरा हाल है।
2: गर्मी में तो सभी के बुरे हाल है। एसी कूलर सब फेल हो रहे हैं इसके आगे।
1: अब गर्मी में तो जहाँ मान लो कि लाइट आ रही जा रही चली जाती है 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लिए, तो
2: वही,
1: और घर से बाहर निकलो तो गर्मी, भीतर रहो तो गर्मी।
2: हाँ वही तो।
1: आप कैसी मैडम?
2: हम बहुत अच्छे हैं, बस चल रहा है काम, गर्मी में रहते हुए सारे काम। अपने कामों में तो कोई रुकावट आती नहीं है ना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी।
1: है ना? काम तो मैडम, काम तो ऐसा भी हो तो जिंदगी भर लगा है,
2: लगा रहता है वो
1: काम तो जिंदगी भर लगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: हमको सुना दीजिए आंटी नंबर वन का।
2: अच्छा, आंटी नंबर वन।
1: हाँ जी।
2: उसका कौन सा गीत?
1: बुलबुला रे बुलबुला, मैं तेरी बाहों में बुला।
2: अच्छा, बुलबुला, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये गीत हम आपको अवश्य सुनवाएंगे, कल के प्रोग्राम में आप अपना ये गीत सुन पाएंगे, ठीक है हरदयाल जी?
1: अपना नाम?
2: हाँ, मेरा नाम कविता रावत है।
1: आपसे बहुत दिन से मुलाकात हुई, आप पहली बार बात हो रही है आपसे।
2: जी जी जी, नहीं शायद 1 तारीख को जब आपने कॉल किया था ना, तब हमसे ही बात हुई थी।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, तभी हमें आपका नाम भी याद है।
1: नहीं माने, एक मैडम जी आती है कविता रावत, एक कविता आपसे।
2: नहीं, कविता नाम की एक ही अनाउंसर है यहाँ पर।
1: अच्छा अच्छा,
2: चलिए ठीक है हरदयाल जी।
1: चलो ठीक है जी
2: जी, नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते।
1: नमस्ते मैम। मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा।
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: अशोक सिंह
0: अशोक सिंह जी।
1: जी, मैडम कैसी हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए क्या हाल है
1: मैं भी
0: आपके?
1: ठीक हूँ, गर्मी का मजा ले रहे। गर्मी पड़ रही जोरों से अपनी चरम सीमा। जी,
0: देखिए, हर मौसम का अपना अलग-अलग मजा है।
1: मजा लेने चाहिए जो प्रकृति ने बनाया
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन प्रकृति ने बहुत सुहावने मौसम बनाए थे, हम लोगों ने अपने स्वार्थ से परिपूर्ण होकर
1: आपके
0: खराब कर दिया
1: अनुसार
0: है।
1: सब उनको बजाय अपने ही हैं सब।
0: वही वजह अपनी है खुद।
1: ठीक
0: तो और क्या हाल है आपके घर में, सब कैसे
1: है
0: हैं?
1: मैडम, बस सब परिवार सही है। आपके आपके परिवार और आकाशवाणी टीम भोपाल जी।
0: जी हाँ, गीत बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: गीत,
0: गीत कौन सा सुनेंगे? फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम है ना।
1: हाँ गीत सुनवा दीजिए मैडम। गीत सुनवा दीजिए, पलकों की छांव में। हाँ,
0: पलकों की छांव में, ये फिल्म का नाम है।
1: डकिया डाक लाया।
0: अच्छा, ये तो हमें देखना पड़ेगा कि हाँ, मिल गया, डाकिया डाक लाया।
1: किशोर कुमार की आवाज में है ना।
0: हाँ जी बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने। और
1: नहीं तो
0: बड़ी,
1: देश प्रेमी का सुनवा दीजिए
0: नहीं, आपने ये बहुत ही उम्दा पसंद है आपकी, छाट कर लाए ये
1: जी।
0: गीत।
1: हाँ, बहुत याद आती, पहले चिट्ठी पत्रियों को
0: बिल्कुल
1: आता था, पोस्टमैन याद करते थे। अभी भी
0: हाँ
1: आते हैं और कम आते हैं।
0: जी। चलिए, अशोक सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक हफ्ते बाद दोबारा आपसे बात होगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी
1: अब तो
0: नमस्ते।
1: काफी दिन हो गए मैडम, 2-3
0: जी
1: दिन।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: अरे नमस्कार।
0: नमस्ते चांद भाई।
1: अरे कमाल हो गया मैडम जी, मान के चली कहते हैं न दौलत की तमन्ना है, न दौलत की तमन्ना है, न शोहरत की है आरजू, और आपसे बात हो जाए मैडम जी तो सबसे बड़ी जुफ्तजू।
0: अरे वाह चांद भाई, बहुत अच्छी शायरी कर दी है आपने तो।
1: अरे अब आपसे बात कर लेता हूँ तो समझ लो कि मुझे लगने लगता है कि नई जिंदगी मिल गई। समझ,
0: बहुत टाइम बाद कॉल किया है आपने ना।
1: अब तो क्या करें, अब अंकुश तो लगा दिए तो उसके तो पाबंदी करना पड़ेगा, प्रतिबंध आपने लगाया है तो उस पर हमें अमल भी करना पड़ेगा।
0: नहीं नहीं प्रतिबंध नहीं है, ये दूसरे सब श्रोताओं के लिए थोड़ा सुविधाजनक बना दिया गया है, आप उस
1: तो
0: पर बिल्कुल
1: तो
0: भी।
1: खुश हैं मैडम जी, आपसे बताएं सब में खुश हैं, फोन लग जाए तो।
0: देखिए आपका
1: लगे
0: आज भी कॉल लग गया और बात हो रही है आपसे, है ना।
1: लेकिन हो गया, अगर काफी इंतजार के बाद कोई चीज या कोई वक्त मिले मैडम जी तो उसका मजा ही कुछ और अलग होगा।
0: बिल्कुल। अच्छा हमारे श्रोताओं को बता तो दीजिए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, क्योंकि हम
1: अब आपने तो सब कुछ बता दिया, पहले से ही बता दिया कि चांद मोहम्मद भाई बोल रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान, ईडन गार्डन अशोक वाटिका से मजनू दीवाना, आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चांद भाई अब ये बताइए कि आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा अभी मुझे गलत फहमी हो रही है क्योंकि आप डबल रोल हैं, क्योंकि कविता रावत हो सकती हैं या
0: बिल्कुल
1: सुनी?
0: कविता रावत सही पकड़े हैं आप।
1: अरे तो मैडम जी ये मैं बता दूं, सच बता दूं, बातें हो जाएं क्योंकि काफी दिन में हुई है, गीत भले कम बजाइएगा, मैं बता दूं मैडम जी आपको कि आकाशवाणी लखनऊ में दीप्ति जोशी, और मथुरा वृंदावन में रश्मि जी, और आकाशवाणी भोपाल में सुनीता और आप, और विविध

0: भारती मुंबई में ममिता सिंह।
1: अच्छा,
0: एकदम इतनी जबरदस्त आवाज, मिलती जुलती हमें लगता है कि आप बहने हैं एकदम।
1: अरे
0: आवाज में कोई भी गलत फहमी नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और ये पकड़ हमें जरूर रहती है क्योंकि हम आकाशवाणी के इतने गुलाम हैं मैडम जी, बहुत दूर दूर तक फोन लगाते हैं, सुनते हैं
1: जी,
0: क्योंकि इसीलिए आप लोगों की आवाज पहचानते हैं, कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं।
1: हाँ।
0: और आज अकेले हैं, आपकी भाभी जी नहीं है तो थोड़ा सूना सूना लग रहा है, लेकिन गाना बता दें, फिल्म का नाम है मैडम।

0: एक एक पुथाना बांध के रख दी।
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है।
0: है और उसके किशोर कुमार की आवाज है और गीत के बोल है कि वादा तेरा वादा।
1: अच्छा।
0: वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा में सीधा सादा, वादा तेरा वादा। जयवाला मैडम जी,
1: बहुत अच्छा गाना है ये तो, और बिल्कुल हम आपको सुनवाएंगे ये गीत। और यदि ये गीत नहीं मिला
0: तो फिर आप कोई भी सुनवा देंगे दौड़ेगा, लेकिन मिल जाए कोशिश करिए, नहीं तो फिर रोटी का सुनवा देना।
1: मिलेगा मिलेगा वैसे ये गाना।
0: नहीं तो फिर कोई भी सुनवा देना दौड़ेगा, फोन अब शामिल करिएगा मैडम जी आपको।
1: बिल्कुल आप बिल्कुल कल अपना प्रोग्राम सुनिएगा, आपको मिलेगा ये अपना जी, प्रोग्राम
0: जी,
1: सुनने को।
0: धन्यवाद मैडम जी। वो हो गया फोन 10-15 दिन में लगा है तो का
1: चलिए,
0: बहुत अच्छा है, रोज रोज में मजा नहीं आता।
1: जी जी चलिए धन्यवाद।
0: बात और बता दे मैडम जी,
1: जी
0: ये प्रेमदास बाबा जी हैं, एक हमारे मित्र हैं, उनके साथ में गाना सुनते हैं। और क्या है क्योंकि गाने बदलते रहो मैडम जी, और ये सब बदलते रहो तो कार्यक्रम की रोचकता बढ़ी रहती, बनी रहती
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, चलिए, गाना काफी दिनों से सुनने को नहीं मिला था मैडम जी, तो इसलिए
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनवाएंगे।
0: दिक्कत तो नहीं है?
1: नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए कॉल करने के लिए धन्यवाद चांद भाई। हमारे दूसरे श्रोता भी लाइन में लगे हुए।
0: जी ठीक है, आपको प्रणाम दे दीजिए।
1: जी नमस्ते नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्ते अमिता दीदी। लास्ट बार
0: कभी
1: आपसे ही बात हुई थी, देखिए आज लगाया, बहुत देरी लगी रहती हूँ, लग जाता फोन।
0: ये बात सही है। कुछ श्रोता हमारे सच में बहुत लकी हैं,
1: अभी
0: उनका
1: आपसे
0: कॉल।
1: बात हुई थी उसके बाद आप ही फोन लगाया, 15 दिन तो हो गए आराम से। हाँ,
0: अच्छा। शुभ नाम बताइए अपना
1: मैं
0: थोड़ा सा।
1: बरेला की वंदना उपाध्याय बोल रही हूँ दीदी,
0: हाँ कहाँ से?
1: बरेला जबलपुर।
0: बरेला जबल।
1: वंदना उपाध्याय भूल गई दीदी, बेल का शरबत पूछा था आपने।
0: नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप कौन सी दीदी समझ रही हैं?
1: अमिता दीदी,
0: अमिता नहीं, कविता। हम लोगों की आवाज में फर्क नहीं दिखा आपको?
1: मुझे तो आप वैसी लग रही। अच्छा कविता दीदी है, आपसे भी तो
0: जी
1: बात हो चुकी है।
0: हाँ, हम लोग तो बहुत अलग हैं। आपने कैसे हमको अमिता दीदी समझ लिया?
1: तो क्या हुआ ना,
0: नहीं,
1: आप
0: वो बहुत
1: बहुत
0: सीनियर है, बहुत अच्छी वॉइस है उनकी।
1: अच्छी है। और मैं वही तो कोई बात नहीं,
0: चलो कोई बात
1: अमिता
0: नहीं,
1: दीदी
0: अमिता
1: से तो
0: दीदी में
1: कविता
0: ऐसे ही,
1: दीदी
0: कविता
1: से
0: दीदी से ही।
1: नमस्ते कविता दीदी, आपसे भी
0: नमस्ते।
1: मेरी बात हो चुकी है वैसे तो। हाँ, कैसे
0: अच्छा।
1: दीदी आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए, आपके क्या हाल है?
1: बढ़िया है।
0: गीत बताइए, आज कौन सा गीत सुनने का मूड है आपका?
1: कौन सा गीत? रेडियो बंद करूं पहले मैं।
0: कोई सा भी अपनी पसंद का बताइए।
1: पसंद का अब आपसे बात हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा गाना बोलूं। पहले बोलती ये बोला वो बोलूंगी, ऐसा सुनूंगी। ठीक है, मैं बोलती हूँ वो वाला सुना दीजिए, चुरा लिया है तुमने
0: अच्छा,
1: जो
0: यादों की
1: दिल को।
0: बारात फिल्म का।
1: हाँ,
0: ठीक है।
1: और आप बोल रही थी कि रानू गुप्ता का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं भी कर रही हूँ कि वो फोन क्यों नहीं कर रही है।
0: हाँ, मैं भी इंतजार
1: हाँ,
0: कर रही हूँ भाई, बहुत लंबा टाइम हो गया है, क्यों नहीं आ रहा है
1: उनके लिए
0: फोन।
1: गाना डेडिकेट, और हमारे दो फ्रेंड हैं विपिन कटारे जी
0: हाँ
1: और नंदिनी, ये
0: हाँ ये
1: सब फ्रेंड सर्कल टाइप का बन गया। जब आता नहीं तो इंतजार करते हैं कि यार इसका फोन
0: सच
1: आना
0: बात है,
1: चाहिए,
0: सच
1: इसका
0: बात है।
1: नहीं।
0: कुछ लोगों से अपन भले ही मिले नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि काफी उनसे पुराना रिश्ता
1: बहुत
0: है।
1: अच्छी बात करती थी, बढ़िया मस्त मजा आता था। वो लगाती थी फोन, तो
0: हाँ
1: मैं भी वेट कर रही हूँ, जैसे आप वेट कर रही हो उनके फोन का, तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ। ये मैसेज रानू गुप्ता तक पहुंच जाना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: कोई आपको
0: बिल्कुल, कल
1: याद
0: पहुंचेगा, लेकिन कल
1: करता
0: सुनेंगे ना सब प्रोग्राम, तो कल आपका मैसेज पहुंचेगा और परसों कॉल करेंगे, देखिएगा।
1: है। हाँ,
0: चलिए वंदना जी, आपसे
1: दीदी बहुत
0: बातचीत
1: अच्छा
0: करके
1: लगा
0: बहुत अच्छा
1: आपसे।
0: लगा।

0: हेलो
1: उठ तो जाओ।
0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ
1: हेलो
0: जी, फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: जी मैम, हम ग्रामपुर जिला सरायपुर से संगीता पटेल बोल रहे हैं।
0: संगीता जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: ग्रामपुर छतापुर से। जी
0: छतापुर।
1: जी मैम।
0: अच्छा, और कैसी हैं आप?
1: जी मैम ठीक है, आप कैसी हैं? जी
0: हम भी अच्छे हैं। क्या करती हैं आप?
1: घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं मैम। जी
0: घर का काम करना भी आसान थोड़ी ना होता है। और
1: आप
0: घर में
1: कविता
0: कौन
1: मैम
0: कौन
1: बोल
0: है?
1: रही हैं? कविता मैम बोल रही हैं आप?
0: जी कविता मैडम बोल रहे हैं, आपने पहचान लिया।
1: जी मैम आपकी आवाज बहुत सुंदर है। जी
0: थैंक यू, आवाज भी सुंदर होती
1: मैम, जब
0: अरे वाह।
1: पसंद हो तो शक्ल सुंदर पसंद होती है। जी
0: तो आपकी नजरें बहुत सुंदर हैं, इसका मतलब पता है।
1: मैम,
0: अच्छा बताओ संगीता, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत पड़ रही, तो इसीलिए सुनना चाहते हैं जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं।
0: ओहो।

0: ओ, दोपहरी में पाव जले, ये वाला
1: जी
0: मिल जाएगा?
1: जी मैम।
0: ये वाला गीत है,
1: हाँ
0: सुना है पहले? कौन सी
1: हाँ
0: फिल्म
1: कई
0: का
1: बार
0: है?
1: सुना है मैम।
0: अच्छा, कौन सी फिल्म का है ये गीत?
1: फिल्म तो पता नहीं, वो ऐसे ही जट की दोपहरी में पाँव जले है सैया पाँव जले।
0: चलिए कोशिश करते हैं, अगर ये गीत नहीं मिला तो
1: सुनवा देना बाल माता। जी
0: बाल माँ का। हाँ, ये तो गीत बहुत प्यारा है।
1: आपसे बहुत दिनों बात हुई, हमको तो याद
0: बाल माँ
1: नहीं
0: का
1: है
0: कौन सा, ये
1: वैसे
0: तो
1: भी,
0: बताओ।
1: लेकिन और मैम जी हमसे तो होती रहती है जी।
0: अच्छा, ये
1: आपसे
0: तो बताओ
1: भी
0: कि है ना, बाल माँ फिल्म का कौन सा गीत?
1: कोई सा भी सुनवा देना।
0: अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो संगीता जी, कॉल किया आपने और बहुत प्यारी प्यारी बातें करी, दिल खुश कर दिया।
1: जी मैम, हमको तो आपसे और मैम से किसी भी ऐसी बात हो तो बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा ही खुशी होती है।
0: चलो, थैंक यू कॉल करने के
1: लेकिन
0: लिए।
1: जितना हमें गाना सुनने में वो नहीं है, लेकिन आपसे बात करने में ज्यादा अच्छा लगता है। जी
0: चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्ते। ग्राम
0: नमस्ते जी।
1: सुराना, जिला रतलाम से बोल रहा हूँ। शेख हैदर खान।
0: शेख
1: हैदर खान?
0: जी, आपसे शायद पहली बार बात हो रही है शेख हैदर खान जी।
1: नहीं, मैडम, मैं लगाता रहता हूँ, कभी कभी टाइम मिल जाता है तो। मैडम,
0: अच्छा, क्या काम करते हैं आप?
1: मैं तो यूँ तो किसान हूँ, खेती का काम है,
0: अच्छा जी।
1: और आकाशवाणी का बहुत पुराना श्रोता भी हूँ मैं। हाँ,
0: चलिए, तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: ये फिल्म निकाह का गीत तो सुना दीजिए।
0: हाँ,
1: ये दिल की आरजू थी कोई दिल रुबा मिले, महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाज में गीत है। हाँ,
0: बहुत प्यारा गीत है ये। बिल्कुल, ये गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन कल सुन पाएंगे आप? ये 11 से 12 बजे के बीच में प्रोग्राम
1: हाँ,
0: है।
1: सुन लेना ना, मैं तो रेडियो पे सुनता हूँ मैं।
0: बिल्कुल, तो बिल्कुल सुनिएगा और एक हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा।
1: ओके ओके, है ना।
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते, थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: मैम, नमस्ते। मैं
0: नमस्ते।
1: बाग से बोल रही हूँ मैम,
0: कहाँ से?
1: बाग जिला धार,
0: अच्छा, धार जिला से। कौन बोल रही है?
1: बाग। हाँ,
0: कौन बोल रही है
1: हीरू जी बोल रही,
0: जी?
1: हीरू।
0: हीरो?
1: हाँ, बाग से।
0: अच्छा। बताइए, क्या हाल है आपके?
1: आप बढ़िया? आपके कैसे हैं? बढ़िया हो के? कैसे
0: हाँ, बढ़िया बढ़िया। और धार
1: भी
0: में कैसी पड़ रही है गर्मी?
1: गर्मी तो इधर भी है था।
0: बहुत ज्यादा ना।
1: हाँ,
0: कौन सा गीत सुनना है आज?
1: कौन सा गीत? वो क्या नाम रे, कौन सा, कोई सा भी सुना दो आप।
0: कोई सा भी सुना दे।
1: हाँ,
0: चलो, बहुत अच्छी बात है। ये तो आप बहुत ही अच्छी बात बोल रही हैं। हम अपनी पसंद का कोई सा भी गीत सुनवाएंगे आपको, लेकिन निराश नहीं होंगी, वो गीत आपको जरूर पसंद आएगा।
1: हाँ,
0: ठीक है हीरो?
1: मेरा मेरा पति मेरा देवता है, वो सुना दो। जैसा
0: अच्छा चलो, मेरा पति मेरा देवता है।
1: है जैसा है मेरा पति
0: हाँ
1: अच्छा है,
0: चलिए, ठीक है ठीक
1: वो
0: है,
1: बना है
0: वही
1: गाना।
0: सुना देंगे, वही सुना देंगे। चलिए, कॉल करने के लिए
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: मैम।
0: भला

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति कविता रावत की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम से मिलेंगे और

और प्रधानमंत्री जोनास स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 43 साल में यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर है। कल तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होगा जिसमें 5 नॉर्डिक देशों के प्रमुख शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के 2 देशों के दौरे पर हैं। एक पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह दौरा दोनों देशों के बीच और उनके साथ भारत की मित्रता के दायरे को बढ़ाएगा। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा की 16 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग के अनुसार अधिसूचना 25 मई को जारी की जाएगी, वहीं मतदान 18 जून और मतगणना 22 जून को होगी। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए प्रदेश में आज व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया। इस चैटबॉट से लोग घर बैठे सोलर पैनल लगवाने की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को समझ सकेंगे। वहीं मौसम की अगर बात करें तो प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, रतलाम और खंडवा सहित प्रदेश के 28 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं क्रिकेट की खबर में आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी की पसंद पर हमने लिया है फिल्म साजन से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने और गीत लिखा है समीर ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। आदर्श नगर मलोट से राजू शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरव और शाइना शर्मा की। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का फिल्म साजन का ये गीत।

साहिबान, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी की आवाजों में। बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत था शिव हरी का। पसंद आप सभी श्रोताओं की थी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा था गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। पसंद आप सभी श्रोताओं की है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की। साथ ही राजारामनगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, राकेश महाजन, उपाध्याय नगर देवास से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा और कमल निगम। आप सभी की फरमाइश है फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये गीत सुनने की, जिसे आवाज दी है अनुराधा पौडवाल ने। बोल रानी मलिक के हैं और संगीत है नदीम श्रवण का। लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में लीजिए अब सुनिए फिल्म त्रिदेव का गीत मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है।

गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीता बिरक की, जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट की। तो लीजिए सुनिए फिल्म त्रिदेव का ये गीत।

बठिंडा पंजाब रेलवे कॉलोनी से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय सुनना चाहते हैं फिल्म रंग का गीत। आवाजें अलका याग्निक और कुमार सानू की हैं, गीत समीर का है और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: श्रोतागण प्रणाम। कैसी लग रही हैं छोटी छोटी कहानियाँ? आनंद आ रहा है ना? पिछली कथा में मैंने सुनाया था कि दमनक ने करकट को छोटी छोटी कहानियों से ये समझाया कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, अर्थात जिसके पास बुद्धि है बलवान भी वही अधिक होता है। अब आगे।
1: हाँ दमनक, तो आप कहते हैं उपाय द्वारा संजीवक और पिंगलक की मित्रता तोड़ी जा सकती है?
2: हाँ मित्र, मैं भी अपने बुद्धि के प्रभाव से उनमें फूट डालकर उनकी मैत्री को भंग कर दूंगा।
1: यदि आपको पूर्ण विश्वास है तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलिए, हमारा मार्ग मंगलमय हो।
3: आओ आओ दमनक, क्या समाचार है? आजकल दिखते नहीं, साथियों के क्या समाचार हैं?
1: श्रीमान को तो अब हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है और ना ही किसी अन्य पशु का। फिर भी अभयदान हो तो कुछ कहूं महाराज?
3: निर्भय होकर कहो दमनक, हमें ज्ञात है कि आप हमारे शुभचिंतक हैं।
1: मैं आपकी शांति भंग करने कभी नहीं आता महाराज, परंतु राज कार्य की हानि देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठा तो मैं चला आया।
3: आपको बातें बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो कहना चाहते हैं वही कहें।
1: दे

0: वो संजीवक आपके प्रति विद्रोह का भाव रखता है। वो आपको मारकर संपूर्ण वन प्राणियों का स्वामित्व धारण करना चाहता है।
1: दमनक, तुम्हें ज्ञात है तुम क्या कह रहे हो। संजीवक और मैं भ्रातुल्य मित्र हैं। ये सब तुम्हें कैसे पता चला?
0: महाराज, मुझे वो अपना विश्वस्त समझता है एवं मुझे इस जंगल के मंत्री पद का लोभ भी दिखाता है। महाराज,
1: संजीवक मेरे प्राण हैं। वो मेरे प्रति द्रोह बुद्धि रख सकता है, ये मेरी कल्पना से परे है। इतना सब कुछ सुनने पर भी उसके लिए मेरे हृदय में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। जैसे प्रिय व्यक्ति के विपरीत आचरण करने पर भी वो प्रिय ही लगता है।
0: इसीलिए तो राजद्रोह जैसा दोष उत्पन्न होता है। एक बात बताएं महाराज, आप किसी विशेष गुण के कारण उस निर्गुण संजीवक को अपने सन्निकट स्थान देते हैं। देव, यदि ऐसा सोचते हैं कि वो रिष्टपुष्ट बलवान आपके शत्रुओं को मारने में आपकी मदद करेगा तो ये व्यर्थ है, व्यर्थ है। वैसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो शाकाहारी है और आप मांसाहारी हैं। अतएव महाराज, मेरी मानिए तो कोई उपाय करके आरोप लगाकर उसे खत्म कर दें।
1: मैं क्या उपाय करूं? दमनक, उसे मैं अभयदान दे चुका हूं, स्वयं उसकी हत्या कैसे करूं? संजीवक मेरा मित्र है। सच कहते हैं कि पहले तो किसी से स्नेह नहीं करना चाहिए, और यदि स्नेह कर ही लिया गया है तो उसमें प्रतिदिन वृद्धि होनी चाहिए। स्नेह से किसी को ऊपर चढ़ाकर गिराना नहीं चाहिए।
0: जी महाराज।
1: तभी तो द्रोही होने पर भी मुझे उसके साथ विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए।
0: स्वामी, द्रोही व्यक्ति को क्षमादान देना राजधर्म नहीं है, अन्यथा राजा स्वयं ही उसके हाथों मारा जाता है। महाराज, एक बात और, संजीवक के संग रहते हुए आपने राजधर्म भी छोड़ दिया है, इस कारण आपके अनुचर भी विरक्त हो चुके हैं। महाराज, वो भी आपको छोड़कर चले जाएंगे, फिर आप दोनों ओर से पछताएंगे। महाराज,
1: दमनक, आखिर इसके प्रमाण क्या है कि वो मुझ पर दुष्ट बुद्धि रखता है?
0: महाराज, उसने आज मेरे सामने ये निश्चय किया है कि कल प्रातः काल होते ही वो आपको मार डालेगा। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। महाराज, कल प्रातः काल वो संजीवक क्रोध से लाल मुख और आंखें लेकर अपने अधरों को फड़फड़ाता हुआ आपकी ओर देखेगा। आप समझ लेना, फिर जो आपको ठीक लगे वो कीजिएगा। मुझे आपको सूचित करना आवश्यक था, सो ही मैंने किया। आखिर आप जाने महाराज।

0: क्या बात है संजीवक जी, कुछ शांत प्रतीत होते हैं।
1: आओ मित्र, आपका स्वागत है। सकुशल हैं?
2: सेवक जन की कुशलता होती कहाँ है।
1: आखिर आप कहना क्या चाहते हैं?
0: मित्र, मंत्रियों के लिए गुप्त मंत्रणा का उद्घाटन करना उचित नहीं। जो व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्त होने पर भी राजा की रहस्यात्मक बातों को सार्वजनिक कर देता है, वो राजकार्य में हानि के अपराध में नरकगामी होता है।
1: आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं भी तो महाराज का मित्र हूं।
0: आपका हृदय तो निश्चल है, परंतु वो पिंगलक आपके ऊपर दुष्ट बुद्धि रखता है। उसने आज एकांत में मुझसे कहा भी है कि वो कल प्रातःकाल होते ही आपको मारकर बहुत दिनों बाद सारे साथियों को तृप्त करे। मैंने उन्हें कितना समझाया कि ये कृत्य उचित नहीं है, आप पर मित्र द्रोह का पाप लगेगा, तो वो मुझे बुरा भला कहने लगे और कहा कि वो मांसाहारी हैं और आप शाकाहारी, इसी कारण आप उनके जातिगत शत्रु हैं और शत्रु को किसी भी उपाय से मारना

0: पाप नहीं है। इसी कारण मैंने आपके सामने रहस्य खोल दिया। अब आप जो उचित समझे वो करें।
1: दमनक, क्या यह संभव है किसी के इतने निकट रहकर उससे बैर किया जा सके? मैं तो चेतना शून्य हो रहा हूं। जो व्यक्ति अपनी मूर्खता से यह समझता है कि मैं राजा का प्रिय हूं, उसे सींग रहित वृषभ के समान समझना चाहिए। मैंने पिंगलक के साथ मित्रता करके बहुत बड़ी भूल की है। अब तक तो उसके साथ ही मेरे विरुद्ध हो चुके होंगे। अब तो मेरे समझाने का भी कोई अर्थ नहीं होगा।
2: सही कह रहे हैं।
1: अब मुझ जैसे निरपराध व्यक्ति के विषय में कोई बातें नहीं सुनेगा।
0: मित्र, यदि यही बात है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पिंगलक से मिलें, अपने वाक चातुर्य से उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। मैं आपके साथ हूं।
1: तुम्हारा प्रेम मैं समझ सकता हूं। परंतु सभासद अगर दुष्ट हो तो भले लोगों का वहां रहना कठिन होता है। वे किसी न किसी उपाय से भले लोगों को मार डालते हैं।
2: ये आप कैसे कह सकते हैं?
1: तो सुनो, किसी वन में मदोत्कट नाम का एक सिंह रहता था। उसके बाघ, श्रीगाल और काक, ये तीन अनुचर थे। एक दिन उन लोगों ने कथनक नामक एक ऊंट को देखा जो वन में अकेले भटक रहा था।
0: अच्छा।
1: उसे देखकर मदोत्कट सिंह ने कहा,
3: ये तो कोई अपूर्व जीव है, लगता है साथियों से बिछड़ गया है। ये वन का है या ग्राम जीव?
4: स्वामी, कथनक नाम का ये ऊंट गांव का है। ये आपका भक्ष है, आप इसको मार डालिए।
3: नहीं नहीं, मैं घर आए अतिथि को नहीं मारता। शत्रु भी अगर अतिथि बनकर आए तो उसे मारने से पाप लगता है, अतः उसे अभय दान देकर यहाँ ले आओ, जिससे मैं उससे यहाँ आने का कारण पूछ सकूं।
4: महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज, आपकी आज्ञा से कथनक को मैं ले आई।
3: कहिए कथनक जी, आप गांव से जंगल की ओर कैसे भटक गए?
5: महाराज, मैं अपने सार्थवाह और साथियों से बिछड़ गया हूँ। भूखा प्यासा धूप में भटक रहा हूँ, पता नहीं कब मालिक के पास पहुँचूंगा।
3: मित्र, अब जब आप गांव से वन आ ही गए हैं तो अब पुनः गांव जाकर भार ढोने के कष्टकारक काम की क्या आवश्यकता है? इसी वन में निर्भय होकर निवास करें और कोमल घास को चरें।
5: महाराज की जय हो।
6: तब से ही वो कथनक मदोत्कट एवं उसके अनुचरों के साथ सानंद रहने लगा। एक दिन मदोत्कट का किसी जंगली हाथी के साथ भीषण युद्ध हुआ। हाथी के मूसल समान दांतों के प्रहार से सिंह को बड़ा कष्ट हुआ। भयंकर पीड़ा को सहकर भी वो बच गया, परंतु शरीर के शक्तिहीन हो जाने के कारण वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया। उसके पराक्रम के अभाव से अनुचर भूख से व्याकुल होकर छटपटाने लगे।
3: बाघ, शगाल, आप जाकर ऐसे किसी जीव की खोज करें जिसे इस अवस्था में भी मैं मार सकूं और आप सबके भोजन का प्रबंध कर सकूं।

0: Jyoga Maharaj.
1: प्रिय बाघ भाई, हम सब तो बहुत भटक चुके हैं, भूख भी लग रही है।
0: बहुत अधिक भटकने से क्या लाभ। मेरे ध्यान में एक योजना आई है जिससे हमारा पेट भी भरेगा और दूर भी नहीं जाना पड़ेगा।
2: तो इस उपाय को बताने में विलंब क्यों, शीघ्र बताएं।
0: ये कथनक हमारे किस दिन काम आएगा। आज इसी को मारकर भोजन किया जाए।
2: हाँ, आप ठीक कहते हैं, परंतु स्वामी ने तो इसे अभयदान दिया है, आप और हम इसे कैसे मार सकते हैं?
1: मित्र काक, मैं स्वामी को समझा कर इस बात के लिए सहमत कर सकता हूँ कि वो इसे मारने को तैयार हो जाएं। आप लोग यहीं ठहरिए। महाराज को श्रृगाल का प्रणाम।
3: कहो श्रृगाल, क्या किसी जीव को खोज लाए हो?
1: स्वामी, संपूर्ण घूमकर हम वापस लौट चुके हैं, एक भी जीव नहीं मिला।
3: अब क्या किया जाए, दुर्बलता के कारण मैं अधिक परिश्रम भी नहीं कर सकता। आप सब भूख से व्याकुल होंगे।
1: भूख की क्या बात है महाराज, अब तो एक पग चलना भी शक्ति से बाहर है। आपकी दशा क्या अलग है? ऐसे में यदि आपकी आज्ञा हो तो कथनक के मास से आपके लिए भोजन का प्रबंध किया जाए।
3: धिक्कार है पापी, यदि फिर कभी ऐसी बात कहोगे तो तुम्हें उसी क्षण मार डालूंगा। तुम्हें ज्ञात नहीं, मैंने उसे अभयदान दिया है, उसे मैं स्वयं कैसे मार सकता हूँ?
1: धृष्टता क्षमा करें महाराज, यदि आप उसका वध करते हैं तो निसंदेह दोष आपको लगेगा, परंतु यदि स्वामी भक्ति के कारण वो स्वयं जीवन का बलिदान करता है तब तो कोई दोष नहीं
3: है। ये कैसी अनर्गल बात है, वो स्वयं ऐसा क्यों करेगा?
1: अगर कथनक ऐसा नहीं करता है तो आप हम तीनों में से किसी को भी मार कर अपना भोजन बना लीजिएगा। यदि स्वामी की रक्षा में हम इतना भी नहीं कर सकते तो स्वामी के अनिष्ट होने पर हमें तो वैसे भी अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा।
3: ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा हो करो।
4: फिर तीनों ने दुष्ट चाल चली और कथनक को लेकर मदोत्कट के पास जाकर बैठ गए।

0: स्वामी, हम संपूर्ण वन घूम आए, ना तो कोई जीव मिला ना ही दिखाई पड़ा। प्रभु, आज आप मुझे ही खाकर अपने प्राणों की रक्षा करें, जिससे आपको थोड़ी शक्ति मिले और मुझे सदगति, क्योंकि अपने स्वामी के लिए प्राण त्याग करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है।
1: फग्निका, आप नारी हैं और अल्पकाय हैं, आपसे स्वामी का पेट नहीं भरेगा, अपितु जीव वध का पाप भी लगेगा। आपने अपनी स्वामी भक्ति तो दिखा दी, स्वामी से उदर पूर्ति ग्रहण करने का ऋण भी चुका दिया, दोनों लोकों में आपकी प्रशंसा भी हो चुकी। अब आप स्थान ग्रहण करें ताकि मैं स्वामी से कुछ कह सकूं।
0: आप बड़े हैं श्रीलाल भाई, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी।
1: स्वामी, सेवक का जीवन स्वामी के अधीन होता है, वो समय आने पर उसे लेने से पाप का भागी नहीं होता है, तो देर ना करके मेरे शरीर से भोजन ग्रहण करके जीवन निर्वाह किया जाए और मुझे तीनों लोक में यश का भागी बनने दिया जाए।
2: मित्र श्रीकाल, आप महाराज के सजातीय भी हैं।

0: और अल्पकाय भी। नाखून लंबे होने के कारण आप अभक्ष्य भोजन हैं। थोड़ा सा अभक्ष्य भोजन करके अपना परलोक क्यों नष्ट करना? वैसे आपने कुलीन होने का जो परिचय दिया है वो प्रशंसनीय है, परंतु अभी मैं स्वामी के समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।
1: ठीक है बाग मामा, जैसा आप चाहें।
0: महाराज, आज मेरे शरीर से भोजन किया जाए, मुझे स्वर्ग का अक्षय वास दिया जाए, पृथ्वी पर मेरे यश का विस्तार हो। अब इस विषय में कोई भी विकल्प न सोचा जाए महाराज, मुझे ग्रहण करें, मुझे ग्रहण करें महाराज।
2: इन सभी ने मीठी बातों से स्वामी के हृदय में अपना स्थान बना लिया। प्रभु ने किसी को भी नहीं मारा। मैं भी सही समय में स्वयं को निवेदन कर दूं, मेरी बात सुनकर सब मेरी प्रशंसा करेंगे और स्वामी मुझे नहीं खाएंगे। बाघ मामा, आप ठीक कहते हैं, परंतु आप भी तो नखयुक्त जीव हैं, आपके मांस को भी स्वामी कैसे खा सकते हैं? कहते हैं जो मन से भी अपनी जाति का अनिष्ट चाहता है उसका दोनों लोकों में अनिष्ट होता है। अतः मामा आप हट जाएं ताकि मैं स्वयं को प्रस्तुत कर सकूं।
0: नहीं कथनक, आप तो अतिथि हैं, आपको कैसे मार सकते हैं?
2: स्वामी, ये सभी आपके भोजन के लिए अयोग्य हैं, अतः आज मेरे शरीर से जीविका चलाई जाए। महात्मा साधुजन वर्षों की तपस्या से जिस सदगति को प्राप्त करते हैं वो एक श्रेष्ठ सेवक स्वामी के लिए प्राण देकर प्राप्त कर लेता है।
3: आप बिल्कुल सही कहते हैं कथनक, आओ साथियों आओ।

0: कथनक के निवेदन को सुनकर सिंह की आज्ञा से श्रगाल तथा व्याघ्र ने मिलकर उसे फाड़ डाला। कथनक का प्राणांत हो गया। सिंह के साथ भूख से पीड़ित अनुयायियों ने कथनक को खा डाला। ये कहानी सुनाकर संजीवक ने दमनक से कहा,
1: अम्मा समझ नहीं आता, अब मैं क्या करूं?
2: मेरे विचार से आप कहीं विदेश भाग जाएं।
1: नहीं नहीं, जब पिंगलक क्रुद्ध है तो मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए।
2: अरे ये दुष्ट तो युद्ध के लिए प्रस्तुत जान पड़ता है। इसने अगर अपने तीखे सींगों से स्वामी पिंगलक पर प्रहार किया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह से इसे अन्यत्र भेजना होगा। मित्र आप ठीक कहते हैं, पर स्वामी और भृत्य में संग्राम होना उचित नहीं है। क्योंकि कहते हैं बलवान शत्रु को देखकर उत्तेजित होना मूर्खता है, ऐसे में अपमानित होना पड़ता है जैसे टिप टिप को होना पड़ा समुद्र के सामने।

और फिर उस दुष्ट दमनक ने संजीवक के मन में पाप भर दिया। फिर उसे वहां से भाग जाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचकर सुनाने लगा, जिसमें टिकटेब और समुद्र की कथा

सुनाई। पर वो कथा आप सुनेंगे अगले सप्ताह, आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम से मिलेंगे। प्रधानमंत्री जोनास टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 43 साल में पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर है। कल तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होगा जिसमें 5 नॉर्डिक देशों के प्रमुख शामिल होंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री

क्षेत्र को एक उज्जवल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस साल कुल 131 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच 20,000 मीट्रिक टन LPG लेकर एक जहाज हॉर्मुज जल्द हमरो मध्य पार कर गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंच गया है। मार्च के शुरू से 12 LPG टैंकर्स और एक कच्चे तेल के टैंकर सहित 13 भारतीय जहाज स्वदेश आ चुके हैं। जबलपुर में कल हाईकोर्ट के कई डिजिटल प्लेटफॉर्म एक साथ लॉन्च किए गए। अब कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग, ऑर्डर की डिजिटल कॉपी और कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकेगी। AI से लैस प्रथम सिस्टम और संकेत वाणी ऐप भी लॉन्च हुई। और IPL क्रिकेट प्रतियोगिता में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से लीजिए सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रेक्षा सक्सेना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। श्रोताओं, गर्मी का मौसम आते ही शरीर जल्दी थकने लगता है, पसीना अधिक आता है और पानी की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं भी होने लगती हैं। ऐसे समय में पेट भरना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि ऐसा भोजन जरूरी होता है जो शरीर को सही पोषण और ऊर्जा दे। इसी को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है फॉर्मुलेटेड डाइट, यानी ऐसा संतुलित आहार जिसे शरीर की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। ये एक ऐसी डाइट है जिसमें शरीर की उम्र, स्वास्थ्य और जरूरत के अनुसार पोषक तत्वों का सही संयोजन होता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और पर्याप्त तरल पदार्थ शामिल किए जाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहे। इस डाइट में सामान्यतः दालें, दूध और दुग्ध उत्पाद, हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, सलाद, दही, छाछ, नारियल पानी और पर्याप्त पानी शामिल होते हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें कम तेल मसाले और आसानी से पचने वाला भोजन भी शामिल किया जाता है। गर्मियों के मौसम में फॉर्मुलेटेड डाइट जरूरी हो जाती है, क्योंकि इस मौसम में शरीर में ऊर्जा और पानी की कमी जल्दी होने लगती है। संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, थकान कम करता है, पाचन को बेहतर बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो श्रोताओं, आप भी अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, फॉर्मुलेटेड डाइट डाइटिशियन की सलाह से लें एवं इसका लाभ उठाएं। पर अभी सुने ये मधुर गीत।

0: श्रोताओं, जब चिकित्सा पद्धति की बात आती है तो आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको सुनवा रहे हैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति और स्वास्थ्य विषय पर एक भेंट वार्ता। वार्ताकार है डॉक्टर ऋषि मिश्रा और भेंट करता है मनीष गजबीय।
1: श्रोताओं नमस्कार। आयुर्वेद से हम सभी परिचित है, यह भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में से एक है। आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद किस प्रकार कार्य करता है और इसमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर ऋषि मिश्रा। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: ऋषि जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति क्या है और यह किस तरह से काम करती है।
2: ये चिकित्सा पद्धति सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो कि पुराने समय में भी बहुत लाभदायक थी और आज के समय में भी बहुत लाभदायक है
1: जी।
2: इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वह है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रश्नम। इसका मतलब है हम स्वस्थ व्यक्तियों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं
1: जी।
2: और साथ ही अगर कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसके रोग का निर्मूलन कैसे पकड़ सकते हैं
1: जी जी जी।
2: इसमें आपको क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे
1: जी।
2: हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपने आप को रोगों से और क्योर कैसे कर सकते हैं
1: जी। ऋषि जी, आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है तो लोगों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, आयुर्वेद के द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है इन बीमारियों को
2: जी? बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और अभी के समय में लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम क्यों रोगी हो रहे हैं
1: जी।
2: और यह लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज ज्यादा अपने को देखने में आ रही है, जैसे मोटापा हो गया, बीपी हो गया, ये बीमारियां ज्यादा देखने में आ रही है और ये बहुत कॉमन होती जा रही है।

0: रही हैं
1: जी।
0: इन बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन है और हमको इसमें ऋतुचर्या दिनचर्या का पालन करना चाहिए। ऋतुचर्या और दिनचर्या के पालन करने से हमारे जो रोग हैं ये हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनकी तीव्रता को भी कम किया जा सकता है
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने बात करी जैसे मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की, तो ये जो डायबिटीज ब्लड प्रेशर है क्या इसका इलाज भी संभव है आयुर्वेद में?
0: हाँ जी बिल्कुल, इसका वर्णन है आयुर्वेद में। डायबिटीज को हम मधुमेह कहते हैं जो कि प्रमेह के अंतर्गत बताया गया है और उसके अंदर उसके कारणों को भी बताया है और उसका निदान भी बताया है, इलाज भी बताया है
1: जी। डॉक्टर साहब, आजकल लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, तो स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो उसमें आजकल जो सबसे बड़ा प्रश्न है वह है मानसिक स्वास्थ्य का भी, तो क्या मानसिक स्वास्थ्य का भी इस चिकित्सा पद्धति में इलाज संभव है?
0: हाँ जी बिल्कुल है, और हमारे प्रकृति में ऐसी कई वनौषधियां हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। जैसे आपको शंख पुष्पी हो गई, ब्राह्मी हो गई, जटामानसी हो गई, ऐसे कई मेद द्रव्य बताए गए हैं जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा लाभ प्राप्त करवाते हैं। साथ ही आयुर्वेद में एक पंचकर्म चिकित्सा भी है जिसमें शिरोधारा प्रक्रिया यह इसके लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें शिरोवस्ती होती है, शिरो अभ्यंग होता है, ये भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया चीज है
1: जी। जी
0: आयुर्वेद में योग का भी वर्णन है, योग में आपको ब्राह्मी प्राणायाम होता है, इससे भी लाभ मिल सकता है। तो मतलब बहुत तरीके से हम मानसिक चिकित्सा इसमें हम दे सकते हैं
1: बिल्कुल
0: मानसिक रोगों में।
1: डॉक्टर साहब, अब जैसे आपने बात करी पंचकर्म की, तो आजकल पंचकर्म क्रिया का भी नाम आयुर्वेद में बहुत ज्यादा सुना जा रहा है, तो क्या यह पंचकर्म जो प्रक्रिया है उससे किसी भी तरह के पेशेंट को किस तरह का लाभ मिलता है इस पद्धति के द्वारा?
0: पंचकर्म एक शोधन चिकित्सा है। हम आयुर्वेद में ये देखते हैं कि रोगी के अंदर कौन सा दोष बढ़ा हुआ है जिसमें वात पित्त कफ हमारे मुख्यतः दोष माने गए हैं और ये अपने सही प्रमाण से ऊपर रहते हैं तो वो दोष के लक्षण दिखाते हैं, तो इन दोषों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो पंचकर्म है। इसमें कुछ हद तक हम शमन चिकित्सा के रूप में या रोगों को थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए भी प्रयोग करते हैं और ये आत्यक चिकित्सा के रूप में भी काम आती है, मतलब एक्यूट पेन रिलीफ करने में भी मदद करती है
1: जी।
0: पंचकर्म को हम मुख्यतः तीन भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पूर्व कर्म, दूसरा होता है प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में आता है स्नेहन स्वेदन जिसमें हम ऑयलिंग करते हैं, स्टीमिंग करते हैं, उसका भी बहुत सारा अलग विस्तृत वर्णन है जिसमें अलग अलग रोग के हिसाब से हम उसको प्रयोग में लाते हैं। मुख्यतः प्रधान कर्म में आते हैं जो पांच मुख्य कर्म है, उसमें वमन आता है मेडिकेटेड वोमिटिंग, दूसरे नंबर पर आता है विरेचन मेडिकेटेड लूज मोशन, फिर तीसरे नंबर पर आती है बस्ती चिकित्सा जिसमें हम ऑयल और काढ़े को एनस में इंट्रोड्यूस करते हैं, चौथे नंबर पर आता है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण के अंदर हम ब्लड लेटिंग करते हैं, कहीं किसी पार्ट में अगर हमारे को कहीं ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है या वहाँ घाव बन रहा है तो उस जगह से हम दूषित रक्त को निकालते हैं
1: जी।
0: पांचवें नंबर पर आता है नस्य प्रक्रिया। नस्य प्रक्रिया यानी नाक में मेडिकेटेड ऑयल को, कुछ चून को या काढ़े को इंट्रोड्यूस किया जाता है एक चिकित्सक के देखरेख में और वो प्रक्रिया हमको बहुत अच्छा लाभ देती है। ऐसे ये पांच मुख्य कर्म पंचकर्म में आते हैं। इसके बाद पश्चात कर्म होता है, जब भी हम कोई कर्म कर रहे होते हैं तो उसके बाद में जो पश्चात कर्म में धूमपान वगैरह होता है, संसर्जन कर्म होता है, उसको फॉलो किया जाता है
1: जी। जी तो ये आपने पंचकर्म की बात करी, तो पंचकर्म करने के लिए क्या पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना अनिवार्य है या वह घर में रहकर भी इस चिकित्सा पद्धति का लाभ ले सकते हैं?
0: नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमको चिकित्सक की देखरेख में ही कराना है क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ी सी आसान नहीं है। इसमें चिकित्सक उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करता है, देखता है कि उसके वाइटल्स क्या है, उसकी स्थिति क्या है, क्या वो प्रोसीजर के लायक है या नहीं है, इस प्रकार से वो डिजाइन करता है एक चिकित्सक। तो इसलिए इसको हॉस्पिटल में कराना या एक कुशल चिकित्सक की देखरेख में कराना ज्यादा उचित होगा
1: जी। जी जी अब जैसे आपने बात करी पंचकर्म की, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पद्धति में खानपान की भूमिका क्या रहती है?
0: हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो आहार हमारी सबसे पहली चिकित्सा है। आहार से ही हम अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं। अगर जैसे एक उदाहरण के तौर पे ले लें कि हमको एसिडिटी हो रही है, हमको जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, हम उसमें अगर तीखे पदार्थ लेते हैं तो वो उसको और एग्रीवेट करता है। उसी के बदले में अगर हमने उसमें थोड़ा सा मधुर द्रव्य दिया तो उसको सबसाइड कर देगा। तो आहार का तो बहुत अच्छा वर्णन है आयुर्वेद में और आहार का महत्व भी बहुत कुछ है इसमें।
1: जी जी जी, हम अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि आजकल की जो बदलती हुई जीवन शैली है उसमें आहार का विशेष कर

0: ध्यान रखें, क्योंकि आहार के माध्यम से जैसा अभी हमें डॉक्टर साहब ने भी बोला, काफी हद तक हम चीजों को या बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वो यह है कि क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी जारी रख सकते हैं?
1: ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। आज के दौर में देखने में आता है हमारी प्रैक्टिस लाइन में कि रोगी पहले से ही कुछ मेडिकेशन करता हुआ आ रहा है और वो डिपेंडेंट भी है उसके ऊपर। अब वो चाह रहा है कि मैं थोड़ा स्विच हो जाऊं या मैं उसमें कुछ और अधिक लाभ प्राप्त कर सकूं, तो बिल्कुल आयुर्वेद की उसमें मदद लेनी चाहिए और पैरेलल में आप बिल्कुल ले सकते हैं। अपने डॉक्टर को बता दीजिए और उनके संपर्क में रहिए और फिर आप टैपरिंग डोज में धीरे धीरे अपने मॉडर्न मेडिसिन को आप रिड्यूस करते जा सकते हैं और आयुर्वेद को आप लेते जाएं। ऐसे करें, आपका स्वास्थ्य में अच्छा लाभ मिलेगा।
0: जी डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न जो जहन में आ रहा है वो यह आ रहा है कि आयुर्वेद के क्या कोई साइड इफेक्ट है?
1: इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा, देखिए किसी भी चीज की अगर अति मात्रा लेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। चाहे हम डे टू डे लाइफ में शक्कर ज्यादा खा रहे हो तो उसका भी हमको लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान होने लगेगा। ऐसे ही आयुर्वेदिक चिकित्सा है, इसको आपको उचित मात्रा में, उचित प्रमाण में अगर लेंगे तो लाभदायक है। अनुचित प्रमाण में ले रहे हैं और गलत तरीके से ले रहे हैं तो उससे फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा, कुछ नुकसान जरूर पहुंचेगा। क्योंकि आपको अगर चिकित्सक परामर्श देते हैं तो वो उस समय वर्णित करते हैं कि इसको इस तरीके से इस मात्रा में लेना है तो वो लाभदायक बनेगी। जी
0: जी जी जी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आयुर्वेद में ऑपरेशन के माध्यम से भी इलाज संभव है किसी बीमारी का?
1: बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आयुर्वेद सिर्फ औषधि सेवन करने की विधा नहीं है, इसके अंदर ऑपरेशंस भी बताए गए हैं। इसके जो आचार्य हैं वो आचार्य सुश्रुत हैं, जिनको मॉडर्न के डॉक्टर भी अपना फादर ऑफ सर्जरी मानते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छा वर्णन किया है और हमारे यहाँ आज भी कई बीमारियों के ऊपर सर्जरी होती है, जैसे मुख्यतः पाइल्स के अंदर, भगंदर यानी फिस्टुला, इसके अंदर की जाती है सर्जरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मेडिसिन से पहले क्योर करने की कोशिश करते हैं। अगर ज्यादा देर हो गई है और बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो गया है डिजीज, तो फिर सर्जरी भी की जाती है जिसमें क्षार सूत्र पद्धति से इलाज किया जाता है।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों को अक्सर देखा है कि वो सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं बिना डॉक्टर के परामर्श के, स्वयं से ही दवाई ये सोच के ले लेते कि शायद आयुर्वेद में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं बताना चाहूंगा कि ये सेल्फ मेडिकेशन की चिकित्सा विधा नहीं है। ये दिखती आसान है पर इसके अंदर बहुत कुछ अध्ययन करने की जरूरत होती है। हम एक औषधि के अंदर रस, गुण, वीर, विपाक सब कुछ देख रहे होते हैं और एक आयुर्वेद चिकित्सक अपने 5.5 साल की पढ़ाई करके एक बैचलर डिग्री प्राप्त करता है। आज के समय में इसमें स्पेशलाइजेशन होने लग गया है, इसमें MD होने लग गई है, तो स्पेशलाइजेशन होने से और क्वालिटी इनहेंस हुई है। तो सेल्फ मेडिकेशन लेने से कई गलतियां होने के चांसेस बनते हैं और जो कि रोगी को भोगने पड़ते हैं और फिर वो समय की भी मर्यादा है। अगर कोई रोगी अपने जितनी जल्दी डॉक्टर के पास में पहुंच जाता है तो रोग को ठीक करने में हमें समय कम लगता है और जितना समय ज्यादा गवा देता है उतने ही कॉम्प्लिकेशन उसके साथ में जुड़ जाते हैं, तो फिर इलाज करने में देरी होने लगती है। तो बेहतर है कि हम सेल्फ मेडिकेशन करके टाइम वेस्ट ना करें और हम उसकी जगह पर चिकित्सक से परामर्श ले लें तो जल्दी समय मिलेगा इलाज करने का और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, जल्दी ठीक होने की बारी आ जाएगी। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आज के दौर में इंटरनेट पर अवेलेबल हो गए हैं रील्स वगैरह जिसमें लोग अपना उधर से देख के सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जो कि हमारे प्रैक्टिस में देखने में आ रहा है। तो ये वही श्रोता है जो सेल्फ मेडिकेशन पर चले जा रहे हैं या वो किसी रील्स के कारण देख रहे हैं या ले रहे हैं दवाइयों को, यह अनुचित है। इसमें आप उस विंडो पीरियड, वो जो पीरियड है, जो शुरुआती पीरियड है जिसमें हम जल्दी ठीक कर सकते थे, वो गवा देते हैं
0: जी
1: और फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो डॉक्टर के लिए भी आप चुनौती बढ़ा रहे हैं और अपने लिए भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा मुझे कहना है कि ये सेल्फ मेडिकेशन को तो बिल्कुल ना करें, हमारे आसपास चिकित्सक अवेलेबल हैं और उनको दिखा के आप चिकित्सा परामर्श लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: जी बहुत अच्छी बात की आपने और हम अपने तमाम श्रोताओं को यही कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के जो दौर है उसमें बिल्कुल भी आप किसी तरह की रील को या किसी तरह की साइट पे जाकर स्वयं से उसका इलाज करने की कोशिश न करें। डॉक्टर है, डॉक्टर से परामर्श लें और तभी आप अपना इलाज करें। कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते डॉक्टर साहब

0: आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि वह किस तरह से अपनी स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से?
1: आयुर्वेद एक आपको बहुत अच्छा साइंस मिला है और उस साइंस में क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव दोनों चीजें मेंशन है, तो आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से अच्छा ध्यान रख सकते हैं अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। मुख्यतः आहार पर अपना ध्यान रखना चाहिए, आज की तारीख में जंक फूड फास्ट फूड बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है और वही हमको नुकसान दे रही है। दूसरा, हमारी निद्रा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी प्रॉपर लेना है। ये नहीं कि अपने कार्य के कारण आप निद्रा को प्रॉपरली ना लें तो फिर आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी और आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो आहार और निद्रा पे विशेष रूप से ध्यान रखें तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका कार्य क्षमता अच्छी रहेगी।
0: डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो बताई गई बातें हैं वह हमारे श्रोताओं के काम आएगी, हम यही उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी आयुर्वेद और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर ऋषि मिश्रा से मनीष गजबिये की बातचीत, और अब सुनिए ये प्यारा संगीत।

श्रोताओं, आज का युग तकनीक का युग है। तकनीक ने जहां हर क्षेत्र में अपना स्थान लिया है, वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया है। आज मोबाइल एप्स, स्मार्ट वॉच और ऑनलाइन परामर्श की मदद से लोग घर बैठे अपनी सेहत पर नजर रख पा रहे हैं। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद और कदमों की गिनती जैसी जानकारियां अब तुरंत मिल जाती हैं। टेलीमेडिसिन के माध्यम से अब दूर दराज के मरीज भी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह ले पा रहे हैं। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कई बीमारियों की पहचान जल्दी करने में मदद कर रहा है, लेकिन तकनीक का सही उपयोग भी आवश्यक है। केवल इंटरनेट की जानकारी पर भरोसा करने की बजाय डॉक्टर से सलाह लेना भी आवश्यक है। स्क्रीन टाइम कम रखना व नियमित व्यायाम भी उतना ही जरूरी है। अब तो तकनीक इतनी एडवांस हो गई है कि ऐसे उपकरण भी आ गए हैं जो नींद की गुणवत्ता को ट्रैक करने, उसका विश्लेषण करने और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह तकनीक आपको गहरी नींद, खर्राटे, दिल की धड़कन और सांस लेने के पैटर्न को समझने में सहायता करती है। तकनीक और स्वास्थ्य का संतुलित मेल

0: श्रोताओं, गर्मी के इस मौसम में हम लेकर आए आपके लिए कुछ विशेष सेहत सूत्र, जिससे बढ़ते तापमान में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और ताजे फलों का सेवन करें। ज्यादा तले भुने खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। हल्का व सुपाच्य भोजन लें। दोपहर की तेज धूप में घर से बाहर निकलने से बचें और निकले तो सिर व मुंह ढककर और आंखों पर धूप का चश्मा लगाकर निकले। लू से बचने के लिए केरी के पने का सेवन करें व प्याज की एक गांठ साथ में लेकर ही बाहर निकलें। सूती और हल्के रंगों के कपड़े पहने जिससे शरीर को ठंडक मिले। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें क्योंकि गर्मी उन्हें अधिक प्रभावित करती है। थोड़ी सी सावधानी और सही दिनचर्या अपनाकर हम गर्मी के मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं। उम्मीद है इन सभी बातों को अपनाकर आप अपने को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखेंगे। श्रोताओं, उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक अवश्य दें। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। इसी के साथ अपनी रेडियो दोस्त प्रेक्षा सक्सेना को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 1:30 हुए हैं। लीजिए अब पेश है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र सिंह नरवरिया और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं लोक भजन।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राजेंद्र सिंह नरवरिया और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल के प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है हमारा अगला कार्यक्रम सुगम संगीत का। कलाकार हैं प्रकाश पाठक। आप सुनिएगा इनकी आवाज में चंद गजलें। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। पेश है पहली गजल। शायर है दुष्यंत कुमार त्यागी।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगली गजल। कलाम है गोपाल दास नीरज का और कलाकार प्रकाश पाठक।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रकाश पाठक की गायी चांद फसले। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म कश्मीर की कड़ी से। SH बिहारी के बोल हैं और संगीत ओपी नैयर का, खूबसूरत आवाजी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। श्री शाह आज जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वे जगदलपुर स्थित बादल अकादमी में शहीदों के परिजनों, सुरक्षा बलों के जवानों, नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों और विभिन्न स्थानीय समाज के प्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे। शाम को वे बस्तर के संघ लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले जम्मू कश्मीर में सेना ने रामबन जिले में ग्राम रक्षा समूहों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य स्थानीय सुरक्षा बढ़ाना, तैयारियों में सुधार करना और तीर्थ यात्रा मार्ग पर रहने वाले निवासियों के साथ समन्वय स्थापित करना था। प्रदेश में भीषण गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। झाबुआ जिले में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और इंदौर संभाग के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से धूप में निकलते समय सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीने की भी अपील की है। प्रदेश में पेपरलेस कार्य संस्कृति को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। नागरिकों को एमपीई सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप पर सरकार के 56 विभागों की 1700 सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हैं। राज्य में साइबर तहसीलों की स्थापना हो चुकी है। इस नवाचार को प्रधानमंत्री पुरस्कार भी मिल चुका है। भोपाल में देश के पहले साइबर पंजीयन कार्यालय की शुरूआत की गई है। प्रदेश में E0 FIR का भी शुभारंभ किया गया है। मंत्रिपरिषद की कार्यवाही पूर्णतः पेपरलेस हो चुकी है, जिससे न केवल समय की बचत हुई है बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ी है। प्रदेश में सुशासन के साथ ग्रीन गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिल रहा है। मध्य प्रदेश लीग 2026 का आयोजन 3 जून से इंदौर में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग की 10 और महिला वर्ग की 5 टीमें हिस्सा लेंगी। पुरुष वर्ग के टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला 3 जून को होलकर स्टेडियम में शाम 7:30 बजे ग्वालियर चीताज और उज्जैन फॉल्कल्स के बीच खेला जाएगा। महिला वर्ग की प्रतियोगिता 4 जून से शुरू होगी, जहां पहले मुकाबले में चंबल घड़ियाल्स का सामना ग्वालियर शीरनेस से होगा। एमपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला 26 जून को शाम 7:30 बजे इंदौर के होलकर स्टेडियम में आयोजित होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में।

0: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पर्यावरणविद प्रखर चिंतक पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। शिवपुरी में विद्युत समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। नर्मदापुरम जिले के विकासखंड केसला में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जबलपुर जिले में कुंडम विकासखंड जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य पूरा करने वाला पहला जनगणना विकासखंड बन गया है। आगरमालवा में किसानों को ई टोकन प्रणाली के माध्यम से सरल सुगम पारदर्शी तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। सतना जिले में पुरुषोत्तम मास के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
3: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एआई कॉरिडोर यानी सीटैक का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र एआई, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन एसएमई और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप

0: ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी लीडिट के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रूपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
3: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है, अमृत काल में मेहनत करने के लिए वो लक्ष्य

0: बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने

0: कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
1: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले यह सुविधा 16 जिलों में थी, अब यह 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
2: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लावारिस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, प्रकाश मेहरा के बोल हैं और संगीत कल्याण जी आनंद जी के। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला जंदे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड भानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। और इसी के साथ एक और पत्र है हमारे हाथ में भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी। तो आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म प्यार झुकता नहीं से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने, बोल है SH बिहारी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति, शिवानी शिमाली, और एक और पत्र है हमारे हाथ में सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सलिया शोएब खान, पोत्रा मुश्तबा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई, और गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

गौरी नगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या, करिश्मा कामले और जिला जालौन से सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक और एक और पत्र हमें मिला है लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू का। हमारे ये सभी श्रोता सुना चाहते हैं तेजा फिल्म का गीत नितिन मुकेश, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार और साथियों की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म बाजीगर से। कुमार सानू, अनु मलिक और साथियों की आवाज है, देव कोहली का गीत है और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां और छत्तीसगढ़ दंतरेगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रंगने से दिरेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवा और आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन के बेड़े को रवाना किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए कहा कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में महाराष्ट्र के लातूर में आरसीसी कोचिंग क्लास के निदेशक शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार कर लिया है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और इंदौर संभाग के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज चेन्नई सुपरकिंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और मध्य प्रदेश लीग एमपीएल 2026 का आयोजन 3 जून से इंदौर में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग के 10 और महिला वर्ग की 5 टीमें हिस्सा लेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

प्रसारण है, दिन के 3 बजे हैं। आइए एक नजर डालते हैं हमारे आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम में युवा वाणी। हमारा आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर और 8:15 पर। शाम 6 बजे होगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:40 पर सुनिए कार्यक्रम आजकल। प्रादेशिक समाचार दर्शन होंगे 6:45 पर। ग्राम सभा ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:21 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में, 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम होगा रात्रि 10 बजे और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनेगा पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। राग होगा जय जय बंती। ये थे हमारे केंद्र से आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 3:02 होने वाले हैं और मीडियम वेव पर प्रसारण हमारा समाप्त होता है। शाम 5 बजे हम कार्यक्रमों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमारा ये प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा का आरंभ करते हैं युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी से।

0: साथियों, अक्सर हम सभी जल्दी में रहते हैं, कभी कॉलेज पहुंचने की जल्दी, कभी ऑफिस पहुंचने की जल्दी, तो कभी सिर्फ समय बचाने की जल्दी। लेकिन ये जल्दी हमारे लिए अक्सर हानिकारक साबित होती है, हमारे परिवार के लिए कष्टदायी साबित होती है। साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के युववाणी कार्यक्रम में। मैं जुड़ चुका हूँ आपके साथ अभिदीप सुहाने और मेरे साथ हैं
1: राधिका वाजपेयी।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
1: साथियों, एक छोटी सी गलती कभी कभी पूरी जिंदगी बदल सकती है, इसीलिए आज बात सिर्फ ट्रैफिक रूल्स की नहीं बल्कि सुरक्षित यातायात की है।
0: साथियों, सुरक्षित यातायात, माफ कीजिएगा साथियों, सुरक्षित यातायात का मतलब है सड़क पर चलते समय ऐसे

0: नियमों और सावधानियों का पालन करना जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके, जैसे कि हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, शराब पीकर वाहन ना चलाना, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना और मोबाइल का उपयोग ना करना। ये सिर्फ नियम नहीं, जीवन की सुरक्षा है।
1: बिल्कुल अभिदीप, भारत में हर साल हजारों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और उनमें सबसे ज्यादा प्रभावित युवा ही होते हैं।
0: ओवर स्पीडिंग, लापरवाही और ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर करना इसके मुख्य कारण है साथियों।
1: कई बार सोचते हैं कि एक बार है, कुछ नहीं होगा। नहीं, लेकिन एक्सीडेंट वार्निंग देकर नहीं आते साथियों।
0: साथियों, आज यूथ सबसे ज्यादा दो पहिया वाहन चलाते हैं। स्पीड और थ्रिल अच्छा लग सकता है, लेकिन सेफ्टी उससे कहीं ज्यादा जरूरी होती है।
1: बिल्कुल साथियों, एक जिम्मेदार युवा वही है जो खुद भी नियम माने और दूसरों को भी जागरूक करे।
0: राधिका, एक बात बहुत सीधी है जो हमारे साथी जरूर समझेंगे कि सड़क पर आपकी जल्दी से ज्यादा किसी की जिंदगी बहुत कीमती होती
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, ट्रैफिक रूल्स हमें रोकने के लिए नहीं, घर सुरक्षित पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि असली स्मार्टनेस तेज चलाने में नहीं, सुरक्षित चलाने में है। साथियों, हमारी सभी साथियों से गुजारिश है कि वे सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: साथियों, अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। साथियों, जब भी हम किसी बड़ी बीमारी का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है इलाज या वैक्सीन।
0: लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं साथियों जिनसे लड़ाई सिर्फ दवाइयों से नहीं, जागरूकता और विज्ञान से भी लड़ी जाती है।
1: साथियों, ऐसी ही एक बीमारी है HIV या एड्स, और इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई यानी आज ही के दिन मनाया जाता है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस।
0: इस दिन का मुख्य उद्देश्य है HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना, वैक्सीन शोध को बढ़ावा देना,
1: वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों का सम्मान करना। साथियों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि HIV के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
0: साथियों, अब सवाल आता है HIV और एड्स क्या है।
1: साथियों, HIV एक वायरस है जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है।
0: अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये एड्स का रूप ले सकता है।
1: अभिदीप, हालांकि आज दवाइयों की मदद से HIV संक्रमित व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकता है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।
0: बिल्कुल राधिका, कई बार बीमारी से ज्यादा खतरनाक उससे जुड़ी गलत धारणाएं और भेदभाव होता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए जरूरी है कि हम सही जानकारी फैलाएं, अफवाहों पर विश्वास ना करें और संक्रमित लोगों के प्रति संवेदनशील रहें।
0: साथियों, आज के युवाओं के लिए हेल्थ अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर माफ कीजिएगा हेल्थ अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बहुत जरूरी है।
1: साथियों, नॉलेज, प्रिवेंशन और रेगुलर अवेयरनेस ही HIV और एड्स से बचाव के सबसे मजबूत तरीके हैं।
0: तो बात सिर्फ एक वैक्सीन की नहीं, बल्कि उम्मीद, जागरूकता और इंसानियत की भी है, क्योंकि बीमारी से लड़ना विज्ञान सिखाता है, लेकिन लोगों के साथ खड़ा रहना इंसानियत सिखाती है।
1: बिल्कुल, और जागरूक समाज ही स्वस्थ समाज बन सकता है।
0: साथियों, फिर से रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। अभी हम चर्चा कर रहे थे विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के बारे में।
3: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
4: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: साथी, आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं वार्ता की ओर। विषय है पर्यावरण संरक्षण। वार्ताकार है सविता मिश्रा।
5: पर्यावरण वह समग्र परिवेश है जिसमें हम जन्म लेते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन छोड़ते हैं।

भूमि, वनस्पति, जीव जंतु, पर्वत, नदियां और मानव समाज सम्मिलित है। आज के वैज्ञानिक और औद्योगिक युग में मानव ने अभूतपूर्व विकास किया है, परंतु इस विकास की कीमत प्रकृति को चुकानी पड़ रही है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता का क्षय, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन वर्तमान समय की गंभीर समस्याएं हैं। पर्यावरण संरक्षण आज केवल एक सामुदायिक मुद्दा नहीं है, बल्कि मानव अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न बन गया है। यदि समय रहते हमने प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। पर्यावरण शब्द दो भागों से मिलकर बना है, चारों ओर का आवरण अर्थात जो घेरा हमारे आसपास का वातावरण। इसके जो घटक हैं, जैविक घटक है मानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, और अजैविक जो घटक हैं जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश, ताप, इन सभी के बीच संतुलन बना रहना आवश्यक है। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो जाते हैं। वर्तमान समय में पर्यावरण की स्थिति, आज विश्व का स्तर पर्यावरणीय संकट गहरा होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन में औद्योगिक क्रांति के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस जैसे गैस की मात्रा में वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसका प्रभाव ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र स्तर में वृद्धि और अनियमित वर्षा के रूप में दिखाई दे रहा है। वायु प्रदूषण, महानगरों में वायु प्रदूषण गंभीर समस्या बन चुका है। वाहन उद्योग और धूल कणों के कारण हवा की गुणवत्ता बिगड़ रही है। जल प्रदूषण, नदियों में औद्योगिक अवशिष्ट और सीवेज का बहाव जल को प्रदूषित कर रहा है। उदाहरण के लिए गंगा नदी की स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। वनों की कटाई का अंधाधुंध कटाई से जैव विविधता पर खतरा बढ़ रहा है। वन न केवल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि वर्षा चक्र को भी नियंत्रित करते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण, एकल उपयोग प्लास्टिक की धरती और समुद्र के दोनों प्रदूषण कर रहे हैं। प्लास्टिक के कारण समुद्री जीवों का जीवन भी संकट में है। जीवन का आधार है शुद्ध वायु, स्वच्छ जल और उपजाऊ भूमि, के बिना जीवन संभव ही नहीं है। प्रत्येक जीव का पारिस्थितिक तंत्र में महत्व होता है। स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रदूषण अनेक बीमारियों का कारण है। आर्थिक स्थिरता के लिए हमें कृषि, पर्यटन और उद्योग पर्यावरण पर निर्भर हैं। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। भविष्य की सुरक्षा के लिए, सतत विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास, कई कानून योजनाएं लागू की गईं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1886, वन संरक्षण अधिनियम, जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे परियोजना आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत में सामाजिक स्तर पर की गई आंदोलनों से पर्यावरण संरक्षण की गति दी गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई पहल थी। विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष 22 अप्रैल को विश्व भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पेरिस का समझौता, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 2015 में पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर समझौता हुआ, जिसे पेरिस समझौता कहा जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, प्लास्टिक का कम उपयोग, जन जागरूकता, ये सारे पर्यावरण संरक्षण के उपाय हैं। शिक्षा और पर्यावरण, विद्यालय स्तर से ही छात्रों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना आवश्यक है। पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। मीडिया की भी भूमिका होनी चाहिए। मीडिया भूमिका पर्यावरण के महत्व को समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया द्वारा जन जागरूक कर सकती है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारा दायित्व पानी और बिजली की बचत, सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग, कचरे का पृथक्करण, जैविक उत्पादों का उपयोग, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर इन सभी का प्रयास सामूहिक रूप से करता है तो धरती पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन संभव है। इससे हमारा निष्कर्ष क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण आज हम जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, इसका विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना समय की मांग है। यदि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति भी हमें सुरक्षित रखेगी। प्रकृति हमारे लिए केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन दाता है। अतः हमें संकल्प लेना चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा करने में आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, हरित और सुरक्षित पृथ्वी सौंपेंगे तो धरती हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपने आने वाली पीढ़ी से उधार लिया है। यदि आप इसको सुरक्षित और सुंदर बनाना चाहते हैं तो इसकी रक्षा करें। 21वीं सदी में विज्ञान और तकनीकी के मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है।

0: परंतु इसी विकास ने पर्यावरण पर गंभीर दबाव भी डाला है। आज पृथ्वी पर बढ़ता तापमान, प्रदूषण, जल संकट, जैव विविधता का क्षरण और प्राकृतिक आपदाओं से बढ़ती आवृत्ति हमें चेतावनी दे रही है कि यदि हम इस समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाएंगे तो भविष्य अंधकारमय हो सकता है। पर्यावरण की अवधारणा के अनुसार हमें अपनी आदतों को बदलना होगा, जैसे कि वायु प्रदूषण। भारत के अनेक शहरों में वायु गुणवत्ता चिंताजनक है। वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और निर्माण कार्यों को उत्पन्न धूल इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। इससे दमा, फेफड़े रोग आदि हृदय रोग बढ़ रहे हैं। नदियों का मानव सभ्यता की जीवन रेखा रही है, परंतु आज अनेक नदियां प्रदूषण ग्रस्त हैं। उदाहरण के जैसे गंगा और भारतीय संस्कृति में पवित्र नदी मानी जा रही है। औद्योगिक अवशिष्ट जो सीवेज के कारण प्रदूषित किया जा रहा है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उर्वरता घट रही है। शहरीकरण के और कचरे ढेर भूमि को अनुपयोगी बना रहे हैं। वृक्षों की कटाई, जिससे वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, वो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, परंतु जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक विस्तार के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। वनों को नष्ट होने से जैव विविधता का खतरा, वर्षा का चक्र में बदलाव, मिट्टी का कटाव, ये सब इसी की देन है। पर्यावरण मानव अस्तित्व की सुरक्षा है, जैव विविधता की रक्षा है, स्वास्थ्य की रक्षा है, और इसका सतत विकास अगर हम करते हैं तो वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बना रहेगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण के कई प्रयास किए गए हैं। इसमें अनेक कानून बनाए, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण अधिनियम। प्रमुख अभियान स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे परियोजना, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, चिपको आंदोलन आदि बनाए गए हैं। पर्यावरण की संरक्षण के लिए वन संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, प्लास्टिक का विकल्प, कचरा प्रबंधन, जन जागरूकता आदि बहुत आवश्यक है। शिक्षा और युवाओं को भूमिका, यदि हम शिक्षकों को शिक्षा और मैं इन सब चीजों का अनिवार्य रूप से विस्तार रूप से मीडिया या समाचार पत्र द्वारा जागरूकता फैलाएंगे तो जनता में कुछ जरूर सुधार होगा। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण के क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों पर सीधा निर्भर होती है, वहीं शहरों के क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण और यातायात प्रदूषण का मुख्य कारण है। जीवन का आधार है शुद्ध वायु, स्वच्छ जल और उपजाऊ भूमि, के बिना जीवन संभव ही नहीं है।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था पर्यावरण संरक्षण। वार्ताकार थी सविता मिश्रा। साथियों, रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।

0: AIR@90।
1: आइए साथियों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा देते हैं मनोरंजन के लिए ये प्यारा सा गीत फिल्म पाप से।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म पाप से ये गीत। आवाज थी राहत फतेह अली खान की,
1: गीत था अमजद इस्लाम अमजद का, संगीत से सवारा था शाही ने।
0: तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज है दिन सोमवार। तो ले चलते हैं आपको जिसका बहुत समय से इंतजार होता है उस कार्यक्रम की ओर, सवाल हमारे जवाब आपके।
1: साथियों, आज हम आपको बताएंगे सवाल हमारे जवाब आपके अंक 120 के प्रश्नों के उत्तर। तो अभिदीप, सबसे पहले हम साथियों को बता देते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर, उसके बाद हम लेंगे हमारे साथियों से जो हमें पत्र प्राप्त हुए हैं सही जवाब वाले। तो साथियों, पहला प्रश्न था वो है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं,
0: जिसका सही उत्तर है सामवेद।
1: साथियों, हमने दूसरा प्रश्न पूछा था, डीएनए की रासायनिक खोज किसने की थी,
0: इसका सही उत्तर है फ्रेडरिक मिशर ने।
1: साथियों, हमने तीसरे प्रश्न के रूप में पूछा था, भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है,
0: जिसका सही उत्तर है राजस्थान।
1: साथियों, चौथा प्रश्न था, यक्षगान किस राज्य की लोक कला है,
0: जिसका सही उत्तर है कर्नाटक।
1: पांचवा

0: प्रश्न था, सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था?
1: जिसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर।
0: साथियों, छठवां प्रश्न था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
1: जिसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त।
0: साथियों, सातवें प्रश्न के रूप में हमने पूछा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
1: जिसका सही उत्तर है फिलीपींस।
0: साथियों, आठवें प्रश्न के रूप में हमने पूछा था, इब्न बतूता द्वारा लिखी गई यात्रा वृतांत का क्या नाम है?
1: जिसका सही उत्तर है रिहला या किताब उर रिहला।
0: साथियों, नौवां प्रश्न था, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहाँ स्थित है?
1: जिसका सही उत्तर है उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के मध्य।
0: साथियों, हमारा दसवां यानी आखिरी प्रश्न था, आकाशवाणी केंद्र छतरपुर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?
1: जिसका सही उत्तर है 7 अगस्त को।
0: साथियों, इन सभी प्रश्नों के लिए हमें ढेर सारे पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से हमें 1 से 7 सही जवाब वाले एक भी पत्र प्राप्त नहीं हुए, 8 सही जवाब वाला हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है। विदीप, बताओगे हमारे श्रोताओं को ये पत्र कहाँ से और किसके द्वारा प्राप्त हुआ है?
1: बिल्कुल राधिका, तो साथियों हमें 10 में से 8 सही जवाब वाला जो पत्र प्राप्त हुआ है वो है सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा द्वारा।
0: साथियों, हमें 9 सही जवाब वाले कुल 12 पत्र प्राप्त हुए हैं, तो हमें पहला पत्र प्राप्त हुआ है जिन्होंने हमें 9 सही जवाब दिए हैं, वो है नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा का।
1: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है हमीरपुर उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा द्वारा।
0: साथियों, हमें तीसरा पत्र प्राप्त हुआ है बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामोरिया और मास्टर अल कबीर द्वारा।
1: अगला पत्र जो हमें प्राप्त हुआ है वो है दुर्ग छत्तीसगढ़ से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े द्वारा।
0: साथियों, में अगला पत्र प्राप्त हुआ है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का।
1: अगला पत्र जो हमें प्राप्त हुआ है वो है बालोद छत्तीसगढ़ से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रम्बिका, लीना और आशुतोष अंगारे द्वारा।
0: 9 सही जवाब वाला हमें अगला पत्र प्राप्त हुआ है दुर्ग छत्तीसगढ़ से वलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, मुरली, नीरा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा का।
1: अगला पत्र जो हमें प्राप्त हुआ है वो पुनः है सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता, हर्ष कुमार, विनीत कुमार और कुमारी कृष्टि पटवा द्वारा।
0: साथियों, हमें अगला पत्र प्राप्त हुआ है जिन्होंने हमें 9 सही जवाब दिए हैं 10 में से, वो है पथरिया भरेवा छत्तीसगढ़ से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल का।
1: अगला पत्र जो हमें प्राप्त हुआ है वो है अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी, तुषारणी और खुमेंद्र मसीहा द्वारा।
0: साथियों, अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है कोयलारी छत्तीसगढ़ से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद, पूर्णेंद्र और साहिल चंद्राकर का।
1: 10 में से 9 सही जवाब वाला जो अंतिम पत्र हमें प्राप्त हुआ है वो है कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर, नयन और सुमांशु पांडे द्वारा।
0: साथियों, हमें 10 में से 10 सही जवाब वाले कुल 5 पत्र प्राप्त हुए हैं, तो पहला पत्र जो हमें प्राप्त हुआ है जिन्होंने हमें 10 में से 10 सही जवाब दिए हैं वो है बावली महाराष्ट्र से गजानन और नवदीप येले।
1: अगला पत्र जो हमें प्राप्त हुआ है वो है नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी द्वारा।
0: साथियों, हमें अगला पत्र प्राप्त हुआ है जिन्होंने हमें 10 में से 10 सही जवाब दिए हैं, वे हैं महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी, पंकज और आयुषी गुप्ता।
1: हमें अगला पत्र जो प्राप्त हुआ है वो है नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी और विभूति साहू द्वारा।
0: साथियों, 10 में से 10 सही जवाब वाला ये आखिरी पत्र है जो हमें प्राप्त हुआ है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। तो साथियों, आज जैसा कि आपको पता है कि जो भी हमें 10 में से 10 सही जवाब भेजते हैं उनमें से हम चुनते हैं एक विजेता, तो सवाल हमारे जवाब आपके अंक 120 के विजेताओं के लिए। मैंने ये कुछ पर्चियां बनाई हैं विदीप, और इनमें से आप जो ये 5 पर्चियां हैं उनमें से आपको कोई ना एक पर्ची उठानी है और हमें देखना है कि आज हमारे अंक 120 के विजेता कौन होते हैं।
1: तो राधिका, इसमें से मैं ना आपको निकाल

0: कोई ना एक पर्ची उठानी है और हमें देखना है कि आज हमारे अंक 120 के विजेता कौन होते हैं।
1: तो राधिका, इसमें से मैं ना आपको निकाल कर देता हूं।
0: आंख बंद कर कर
1: हाँ सॉरी, तो ये लो पर्ची।
0: तो साथियों, ये पर्ची निकली है। सवाल हमारे जवाब आपके अंक 120 20 के जो विजेता हैं उनका नाम है नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी और विभूति साहू का। तो विजेताओं को हमारी ओर से बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: शुभकामनाएं।
1: शुभकामनाएं।
0: साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने विजेताओं को सुनवाते हैं पुरस्कार स्वरूप उनकी पसंद पर प्यारा सा गीत। तो आइए हम सुनते हैं हमारे विजेता की पसंद पर ये प्यारा सा गीत, जिसे लिया है फिल्म सीता और गीता से।
1: लेकिन उससे पहले साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप पेन और डायरी लेकर बैठ जाइएगा, ताकि हमारा जब गीत खत्म हो तो हम आपको सवाल, हमारे जवाब आपके 121 अंक के जब प्रश्न बताएं तो आप उन्हें लिख सकें। आइए सुनते साथियों अब ये गीत।
2: अरे अरे ए ए

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे हमारे विजेता श्रोता की पसंद का ये गीत फिल्म सीता और गीता से। आवाज थी किशोर कुमार और आशा भोसले की।
1: गीत था आनंद बख्शी का, जिसे संगीत से सवारा था आरडी वर्मन ने।
0: अब साथियों, बढ़ते हैं सवाल हमारे जवाब आपके अंक 121 के प्रश्नों की ओर।
1: साथियों, पहले प्रश्न के रूप में हमने पूछा है, चातक ग्रंथ किस धर्म से संबंध रखते हैं?
0: दूसरा प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है?
1: साथियों, तीसरा प्रश्न है, भारत में FDI यानी प्रत्यक्ष निवेशी विदेशी निवेश को कौन सा मंत्रालय नियंत्रित करता है? मैं अपना सवाल पुनः दोहराती हूँ, भारत में FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन सा मंत्रालय नियंत्रित करता है?
0: अगला प्रश्न है, यानी कि चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
1: साथियों, हमने पांचवा प्रश्न पूछा है, उपन्यास काशी का 80 के लेखक कौन है?
0: हमारा छठवां प्रश्न है, शून्यवाद नामक सिद्धांत किसने दिया है?
1: साथियों, सातवां प्रश्न है, प्रेसलर संशोधन कब पारित किया गया था?
0: आठवां प्रश्न है, कंप्यूटर की घड़ी की गति की गणना किस में की जाती है?
1: साथियों, हमने नौवें प्रश्न के रूप में पूछा है, भारत का पहला IIT कहां खुला था?
0: साथियों, सवाल हमारे जवाब आपके अंक 121 का जो आखिरी प्रश्न है वो है, एंजाइम क्या होता है?
1: साथियों, पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, सवाल हमारे जवाब आपके अंक 121, युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र छतरपुर मध्य प्रदेश, पिन कोड है 471001।
0: साथियों, आप हमें इन प्रश्नों के उत्तर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है youthchatarpur@gmail.com।
1: साथियों, इसके लिए हमें आपके पत्र 25 मई 2026 की सुबह तक प्राप्त हो जाने चाहिए, ताकि हम आपके पत्रों को कार्यक्रम में शामिल कर सकें। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और अभिदीप, जब हम म्यूजियम का नाम सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में क्या आता है?
0: पुरानी चीजें, मूर्तियां और इतिहास ही आते हैं अमूमन।
1: बिल्कुल, लेकिन सच कहें तो ये म्यूजियम सिर्फ पुरानी वस्तुओं का संग्रह नहीं है, वे हमारी सभ्यता, संस्कृति और पहचान की कहानी होते हैं।
0: बिल्कुल, तो राधिका, इसी महत्व को समझाने के लिए हर साल 18 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस मनाया जाता है।
1: और इस दिन की शुरुआत इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम यानी ICOM द्वारा की गई थी, ताकि लोगों को म्यूजियम के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके।
0: तो कुछ हम अपने साथियों को भी बता देते हैं। साथियों, हर साल इस दिन की शुरुआत एक विशेष थीम के साथ होती है, जो म्यूजियम की बदलती भूमिका को दर्शाती है।
1: बिल्कुल, म्यूजियम हमें इतिहास, कला, विज्ञान और संस्कृति से जोड़ते हैं। यहाँ रखी वस्तुएं सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें ये समझाने में मदद करती हैं कि हमारा समाज समय के साथ कैसे विकसित हुआ।
0: साथियों, भारत में भी इंडियन म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम जैसे तमाम प्रसिद्ध संग्रहालय हैं।
1: साथियों, आज के डिजिटल समय में म्यूजियम लर्निंग एक इंटरेक्टिव माध्यम बन चुके हैं।
0: ये रिसर्च, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, आर्ट और कल्चरल स्टडीज में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, म्यूजियम हमें सिर्फ अतीत नहीं दिखाते, वे क्रिटिकल थिंकिंग और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी सिखाते हैं।
0: तो साथियों, अगर किताबें इतिहास को पढ़ाती हैं, तो म्यूजियम इतिहास को महसूस कराने में हमारी सहायता करते हैं।
1: बिल्कुल अभिदीप, बिल्कुल सच कहा, क्योंकि जो समाज अपनी विरासत को संभाल कर रखता है, वही अपनी पहचान को

0: मजबूत बनाए रखता है।
1: बिल्कुल राधिका, और शायद इसीलिए म्यूजियम सिर्फ इमारतें नहीं होती हैं, बल्कि कलेक्टिव मेमोरी होती हैं।
0: साथियों, ये तो थी छोटी सी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस पर। और अब चलते चलते बता देते हैं आपको रोजगार सूचना।
1: साथियों, आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
0: साथियों, पद का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड 3।
1: पदों की कुल संख्या है 6,565।
0: आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी।
1: आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है।
0: साथियों, शैक्षणिक योग्यता बीई, बीटेक, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए।
1: अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं।
0: साथियों, अपने सवाल हमारे जवाब आपके अंक 121 के प्रश्न एक बार पुनः दोहरा देते हैं, जिसके लिए हमने आप एक बार मिला लीजिए। हमारा पहला प्रश्न था, जातक ग्रंथ किस धर्म से संबंध रखते हैं?
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स किस क्षेत्र से संबंध रखता है?
0: साथियों, हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन सा मंत्रालय नियंत्रित करता है?
1: चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है?
0: पांचवा प्रश्न हमने जो पूछा है, उपन्यास काशी का 80 के लेखक कौन है?
1: छठवां प्रश्न हमने आपसे पूछा है, शून्यवाद नामक सिद्धांत किसने दिया था?
0: साथियों, सातवां प्रश्न है, प्रेसलर संशोधन कब पारित किया गया था?
1: आठवां प्रश्न है, कंप्यूटर की घड़ी की गति की गणना किस में की जाती है?
0: साथियों, नौवां प्रश्न जो हमने पूछा है, भारत का पहला आईआईटी कहाँ खुला था?
1: सवाल हमारी जवाब आपके अंक 121 का जो आखिरी प्रश्न है वो है, एंजाइम क्या होता है?
0: तो साथियों, इसके लिए हमें आपके पत्र 25 मई 2026 की सुबह तक प्राप्त हो जाने चाहिए। और इसी के साथ आपको बता देते हैं कल के कार्यक्रम। कल आप सुनेंगे कार्यक्रम ज्ञान सरोवर, जिसमें संचालन होगा विवेक श्रीवास्तव का।
1: साथ ही होंगी महत्वपूर्ण चर्चाएं, रोजगार सूचना और मनोरंजन के लिए होंगे गीत। तो साथियों, इसी के साथ ही वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। मैं जुड़ा हुआ था आपके साथ अभिदीप सुहाने, और मेरे साथ थे
0: राधिका वाजपेयी।
1: अब दीजिए हमें इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

अभी युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

आप सुन रहे थे एआर रहमान के संगीत निर्देशन में महबूब के लिखे बोल। आवाज थी शान और कविता कृष्णमूर्ति की। फिल्म का नाम था लकीर।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आइए अब सुनते हैं अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में किस्मत फिल्म का ये गीत। देव कोहली के बोल हैं, आनंद राज आनंद का संगीत।

में किस्मत के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले सुनिए इस सभा के शेष कार्यक्रम। शाम 6 बजे भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 6:30 पर होगा बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। कलाकार होंगे गंगाराम लड़िया। 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में सुनिए श्रोताओं के फोन कॉल्स, ईमेल और पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रंगतूला। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। एक भेंट वार्ता होगी भारत में प्राकृतिक कृषि का मुख्य धारा में समावेशन विषय पर डॉक्टर सागर नागवंशी से बातचीत। और आज की सीख में सुनिए जान के लाले पढ़ना। रात 8 बजे भोपाल से रिले होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 9:15 पर दिल्ली से सुनिए स्पॉटलाइट। 9:30 पर दिल्ली से ही पब्लिक स्पीक। और रात्रि 10 बजे आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। ये कार्यक्रम श्रोताओं के ईमेल और पत्रों पर आधारित होगा। अब सुनिए कल के कार्यक्रम। कल सुबह 7:20 पर बुंदेली सुगंध में आप सुनेंगे बुंदेली किस्सा संकल्प। किस्साकार होंगे हरिराम गुप्त। 7:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। सुबह 8:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा राग स्वर समीर में अमजद अली खां का सरोदवादन। 9 बजे लोकरंग में कलाकार हैं राम सुमन अहिरवार। 9:30 पर एक ही गीतकार ने सुने नुसरत बद्र के लिखे हुए कुछ फिल्मी गीत। 10:05 पर सुनिए पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। इसमें सुनिए वार्ता धूम्रपान का स्वास्थ्य पर प्रभाव। वार्ताकार हैं ओम प्रकाश अग्निहोत्री। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। 10:35 पर सुनिए श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से कल आप सुनेंगे दिन में 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। 12 बजे आपकी फरमाइश। 12:30 पर संग्रहालय से दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम। इसमें सुनिए वार्ता मोबाइल का उपयोग लाभ और नुकसान। वार्ताकार हैं श्रेया श्रीवास्तव। साथ ही सुनिए व्यंजन विधियां। 1:30 पर होगा लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत। 2 बजे फिल्म संगीत और 2:30 पर होगा आपकी फरमाइश। कल सांध्यकालीन सभा में 5 बजे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा।

0: युववाणी, इसमें श्रोता सुनेंगे ज्ञान सरोवर कार्यक्रम। प्रतिभागी होंगे अभय राज सिंह चौहान, रामजीत सेन, श्वेता मिश्रा, प्रियंका मिश्रा, ओम प्रकाश यादव, अनीश कुमार यादव। संचालन होगा विवेक श्रीवास्तव का। स्कोरर होंगे शिवांशु प्रजापति। साथ ही सुनिए रोजगार सूचना। 5:40 पर फिल्म संगीत होगा। शाम 6 होगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 6:30 पर सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा, इसमें कलाकार होंगी पुष्पा देवी अहिरवार। 7:20 पर ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम होगा घरनी, इसमें सुनिए श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। साथ ही सुनिए काव्य पाठ लोकेश कुमार से। और आज की सीख में होगा जैसे ही हम भी वैसे ही तुम भी, उसे ही मिले खसम भी। रात 8 भोपाल से सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर फिल्म संगीत। 9:15 पर दिल्ली से आप सुनेंगे स्पॉटलाइट। 9:30 पर मनी टॉक। 9:45 पर कार्यक्रम मंथन। और रात्रि 10 सुनिए अपना फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। न्यूज हेडलाइंस कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 5:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कल भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय मजबूत करना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में कहा कि मरीज की चिकित्सा सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, ये मानव सेवा का एक माध्यम है। प्रदेश में हाल ही में नियुक्त निगम, मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण और आयोगों के अध्यक्ष उपाध्यक्षों के लिए आज भोपाल में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनजातीय वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज से 25 मई तक अभियान संचालित किया जा रहा है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सौरभ विजय ने आज भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में विधि और न्याय मंत्रालय कल से गुजरात के गांधीनगर में 2 के ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों एसओएम की बैठक की मेजबानी करेगा। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज चेन्नई में शाम 7:30 से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। और एमपीएल 2026 का आयोजन 3 जून से इंदौर में होगा। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग की 10, महिला वर्ग की 5 टीमें हिस्सा लेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: संग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा

0: दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं,
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
0: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी,
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
0: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
0: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
1: जी,
0: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
0: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: तो साथियों, इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
0: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं, अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड, ओके। सो टेल मी, what do you like most?
6: I like playing, sir.
7: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
7: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
3: Yes, sir. We like it.
2: That's very nice, children.
10: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
3: Yes, sir.
2: The rivers, the mountain.

0: mind that the clouds also have different colors from time to time?
1: Yes, sir.
2: I have seen rainbow.
3: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
4: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bati Langlingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
5: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
6: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
7: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका,
8: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
9: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
6: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
10: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
11: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
12: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
11: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.
13: आठ नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है. राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेती बाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागवानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था।

0: पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए।
2: हाँ।
3: तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना?
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों

0: और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
1: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
2: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
3: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
4: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
3: अच्छा।
4: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
3: अच्छा।
4: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
3: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
4: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
3: अच्छा।
4: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
4: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
3: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
4: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
4: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के

0: इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
1: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह

0: तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाहिला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी प्रसारित किया जा रहा था NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
5: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का प्रसारण। आइए अब सुनते हैं बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें कलाकार हैं गंगाराम लड़िया। इनके स्वर में सबसे पहले सुनते हैं गणेश वंदना।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: गंगाराम लड़िया के स्वर में आइए आप सुनते हैं ये भजन।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लोकधारा के अंतर्गत, आप सुन रहे हैं गंगा राम लड़िया के बुंदेली लोकगीत। आइए इनसे अब सुनते हैं दादरा।

0: डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: गंगाराम लड़िया के स्वर में आइए अब सुनवाते हैं गारी।

0: आकाशवाणी एट 90
1: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं गंगाराम लड़िया की आवाज में ये ढिमारियाई लोकगीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आइए अब सुनते हैं गंगाराम लड़िया के स्वर में ये चौकड़िया।

0: अभी आप सुन रहे थे गंगाराम लड़िया के स्वर में चौकड़िया।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

रेडियो वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए अब आपको दे देते हैं गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में एक सूचना। नाम है मोहम्मद अनीस, इनके पिता का नाम है मोहम्मद नबी, निवासी हैं मोहल्ला मैथिली शरण माधोगढ़ जालौन उत्तर प्रदेश। इनकी उम्र है 37 वर्ष, हुलिया है इस प्रकार, लंबाई 5 फुट 3 इंच, रंग गोरा है। इन्होंने क्रीम कलर का पैंट जो कि फिरोजी शर्ट के साथ पहना हुआ है। ये दिनांक 16 मार्च 2024 से लापता हैं। इनका अभी तक कोई पता नहीं है। समय था करीब सुबह 7:30 का। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई भी जानकारी या सूचना प्राप्त हो वो इन नंबर पर संपर्क कर सकता है। मोबाइल नंबर है 7355248193। एक और नंबर है 9838910353। एक और सूचना है, इनका नाम है पुष्पांजलि, पति का नाम है भूरे सिंह, पता है नूरपुर थाना चुरखी। इनकी उम्र है 25 वर्ष, हुलिया इस प्रकार है, लंबाई 4 फुट 6 इंच, चेहरा सामान्य है, रंग सांवला है। इनकी नाक पर और दाढ़ी में तिल है, पतली साइज की साड़ी पहनी हुई है। ये दिनांक 7 मार्च 2026 को समय करीब 12 बजे दिन के अपने निवास स्थल से लापता है।

इनका मानसिक संतुलन कभी कभी बिगड़ जाता है, जिस कारण ये घर से कहीं चली गई हैं और अभी तक वापस नहीं आई हैं। जिस किसी को भी इनके बारे में कोई भी सूचना, जानकारी या संदेश प्राप्त हो, वो कृपया इन मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकता है। भूरे सिंह इनके पति का नाम है। मोबाइल नंबर है 9510181369। श्री अवधेश कुमार सिंह जी कालपी इनका नंबर है 9454401429। और जो थाना अध्यक्ष हैं शिवशंकर, थाना चुरखी जालौन, इनका नंबर है 9454403589। एसआई सुरेश चंद्र इनका भी नंबर दिया है 8543041843। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होंगे।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: हो गया इंतजाम।
5: किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की दो दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। रेड क्रॉस के सिद्धांत बच्चों में सेवा, सद्भाव, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करते हैं, कहा राज्यपाल ने। प्रदेश में जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान आज से शुरू। और प्रदेश के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। मौसम विभाग ने तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने ओस्लो में सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने पर सहमति जताई। ये स्वच्छ ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी और हरित बदलाव के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का

0: पत्थर है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की और आर्कटिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की दो दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में जज्बा इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और तेजी से फैले। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि रेडक्रॉस के सिद्धांत बच्चों में सेवा, सद्भाव, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करते हैं। आज भोपाल में आयोजित जूनियर रेडक्रॉस और युवक रेडक्रॉस शाखा की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए सक्षम पीढ़ी के निर्माण के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों में रेडक्रॉस की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान बच्चों में ज्ञान और संस्कार को प्रदान करने वाली सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। संस्थानों को विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, उन्हें समसामयिक चुनौतियों और जीवन की प्रतिस्पर्धाओं के लिए जुझारू बनाएं, वहीं सफलताओं के दबाव और तनाव प्रबंधन से निपटने का हुनर सिखाएं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मरीज की चिकित्सा सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, ये मानव सेवा का एक माध्यम है। आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक एमओयू बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ऐसे चिकित्सक तैयार करने हैं जो मानव सेवा और मरीज की सेवा के लिए तत्पर हो। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश को सेवा प्रधान स्वास्थ्य नेतृत्व का मॉडल बनाना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियां देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मितवई जीवनशैली अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आत्मनिर्भरता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने कहा कि देश की जनता उनके आह्वान का गंभीरता से पालन कर रही है।
1: वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से मितव्ययी जीवन शैली अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आत्मनिर्भरता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उनके आह्वान का देश की जनता बड़ी गंभीरता से पालन कर रही है। समाज के हर एक वर्ग ने गंभीरता से लिया है और उसके अनुरूप मितव्ययता अपनाने का, डीजल पेट्रोल की खपत घटाने के और बाकी उपायों को भी समाज का लगभग हर वर्ग कर रहा है।
0: प्रदेश में हाल ही में नियुक्त निगम मंडल, बोर्ड प्राधिकरण और आयोगों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के लिए आज विशेष प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। जनजातीय वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज से 25 मई तक राष्ट्रव्यापी सूचना शिक्षा संचार अभियान जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान संचालित किया जा रहा है। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने विभाग के सभी मैदानी अधिकारियों को सफलतापूर्वक शिविर लगाने और लक्षित समूह को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य

जीविका मिशन फोरम की शासी निकाय की बैठक ली, विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। बैठक में विगत बैठक के निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री पटेल ने आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के एचआर मैनुअल पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। प्रदेश में भीषण गर्मी लगातार बनी हुई है। राज्य के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है। गुना में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे आमजन को तेज गर्मी और लू का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, इंदौर संभाग के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट भी जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के बैतूल जिले में 20 मई को प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का संभागायुक्त ने आज निरीक्षण किया। झाबुआ में कल विकासखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। आगर मालवा जिले के सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष ने नगर के वार्ड क्रमांक 7 में 20 लाख रूपये की लागत से बनने वाली सीसी रोड का आज भूमि पूजन किया। नर्मदापुरम जिले में आयुष विभाग द्वारा घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान के तहत जिले भर में नियमित योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सीहोर जिले की बुधनी तहसील में भारत सरकार जनगणना निदेशालय के अधिकारियों ने यहां चल रही जनगणना तैयारियों का निरीक्षण किया। शिवपुरी में विद्युत समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: दी, नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: तीनों कॉलेज में
5: तुम? मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बैनन खां बिरजू भैया की राम राम। देखो भैया संजय बिरिया भाई और हम अपन सबके बीच में आ गए। भैया बैनर जब तक अथाई के चबूतरा पे सभी पंचन से दो दो बातें मन की ना हो जाए तब तक मन का शांति नहीं मिला। और बात भी सही है, इसे होता है कि अपने मन में जो समस्या होता है वह एक दूसरे से कैविस है उस समस्या को हल मिल जाता है। और दूसरी बात भैया जो कि आपसी प्रेम भाव बढ़ाता है। भैया बहनों आज 18 मई है और आज के दिन हम अपन सब विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाऊते हैं। इको मुख्य उद्देश्य जो है कि HIV एड्स की रोकथाम के लाने प्रभावी वैक्सीन खोजवे की आवश्यकता पे जोर देवो है। इसे अपन सब खां इस दिशा में काम कर रहे वैज्ञानिकों और स्वयं सेवकों के प्रयासों का सम्मान प्रोत्साहन दो चाहिए एवं एड्स जैसी संक्रमण बीमारी का अपन सब खान दूर भगाने हैं। और भैया बहनों आज के दिन हम अपन सब अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम दिवस मनाऊत हैं। इको मुख्य उद्देश्य जो ही है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का बचावो समाज के विकास में इके योगदान का समझवो और लोगन के बीच में संग्रहालय के

0: प्रति जागरूकता बढ़ावो है। इसे अपन सबका अतीत के बारे में जानकारी मिलत है और अपनो संपूर्ण विकास होत है। और भैया बहनों हम अपन से आगे भी चर्चा कर भी उसके पहला थोड़ा सो रोकत है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

0: Akashvani at 90. भैया बहनों, अब हम अपन सबका सुनवा रहे हैं भेंट वार्ता। भारत में प्राकृतिक कृषि का मुख्य धारा में समावेशन विषय पर डॉक्टर सागर नागवंशी से बातचीत, सुने सभी जने।
1: देखो पंच भैया, ग्राम सभा में अपन अलग अलग विषय पर अपन जानकारी दिए थे और अपने पंच भैया अधिक से अधिक उत्पादन ले में, अधिक से अधिक लाभ ले में अपनी खेती किसानी में, जो अपनी ग्राम सभा को प्रमुख उद्देश्य है। और आज एक महत्वपूर्ण विषय का लेकर अपने बीच में आए हैं डॉक्टर सागर नागवंशी जी, अपन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे हैं। भारत में प्राकृतिक कृषि का मुख्य धारा में समावेशन, ये विषय पर अपनी बातचीत हुई है। तो डॉक्टर साहब राम राम।
2: राम राम सर।
1: डॉक्टर साहब, अपने किसान भैया बहनन के लाने अपन जो बताऊ थी प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग, जहाँ खेती किसानी की कौन सी पद्धति आए और कैसे इनमें किसानी होते हैं जिसे अधिक से अधिक लाभ अपने पंच भैया का मिल सका थे, और कौन कौन सी फसलें प्राकृतिक खेती के रूप में होते हैं अपन बताऊते।
2: जी सर, प्राकृतिक कृषि इस तरीके की विधि है जो सिंथेटिक इनपुट के बजाय प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है।
1: जी,
2: हम कह सकते हैं कि एक ऐसी संतुलित और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने का प्रयास करती है, जिसमें सिंथेटिक रसायनों या अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के उपयोग के बिना फसलें उगाई जा सकती। सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कृत्रिम आदानों पर निर्भर रहने के बजाय प्राकृतिक कृषि से संलग्न कृषक मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने और फसल की वृद्धि को समर्थन देने के लिए फसल चक्र, अंतर फसल और कंपोस्टिंग जैसी तकनीकों पर भरोसा करते हैं। प्राकृतिक कृषि की विधियां प्राय पारंपरिक ज्ञान या अभ्यासों पर निर्भर होती है और इन्हें स्थानीय परिस्थितियों एवं संसाधनों का अनुकूल बनाया जा सकता है।
1: जी जी। अब डॉक्टर साहब, अपन से जो भी जानना चाहें, प्राकृतिक खेती जो नेचुरल फार्मिंग है, इको कृषि में का कछु महत्व है, अपन अपने पंच भैया ने सो बताऊ थे।
2: जी सर, प्राकृतिक खेती का तो वैसे में कृषि में बहुत महत्व है, लेकिन अगर हम कुछ पॉइंट को जो मेन पॉइंट है अगर हम उनको ले तो अगर हम पहला देख सकते हैं कि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे प्राकृतिक कृषि भारत में समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा की स्थिति में सुधार लाने में मदद कर सकती है, विशेष रूप से छोटे स्तर के किसानों के लिए जो आधुनिक आदानों तक आसान पहुंच नहीं रखते या इसका व्यय वहन करने में सक्षम नहीं होते। दूसरा लाभ अगर हम देखें तो पर्यावरण से संबंधित है। प्राकृतिक कृषि के कई सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, जैसे जल प्रदूषण, मृदा क्षरण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के स्तर में कमी लाते हैं। विभिन्न प्रकार की फसलों और अन्य पौधों के विकास का समर्थन कर जैव विविधता को संरक्षित करने में भी मदद कर सकता है। अगला अगर हम फायदा देखें तो सतत कृषि से संबंधित है। प्राकृतिक कृषि कृषि के प्रति एक सतत एवं संवहनीय दृष्टिकोण है जो प्राकृतिक संसाधनों में कमी लाने के बजाय उन्हें संरक्षित करने और बढ़ाने का प्रयास करती है। यह भारत जैसे देश में विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है जब जनसंख्या में वृद्धि अपेक्षित है और भविष्य में प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव में और वृद्धि होगी।
1: जी जी, बहुत नई जानकारी डॉक्टर साहब अपन दे रहे हैं। अब डॉक्टर साहब, अपन जो भी जानना चाहें, भारत में प्राकृतिक खेती का बढ़ावा देवे की आवश्यकता के पीछे कौन कौन से प्रमुख कारक हैं जिसे जा खेती अधिक से अधिक उत्पादन अपन दे है, अपन बताऊती।
2: जी सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सर, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए तो वैसे कई सारे हमारे पास ड्राइविंग फोर्स हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उनमें से अगर हम देखें तो किसान की आय से संबंधित एक प्रमुख फोर्स है कि आर्थिक अनुकूलन और आगत लागतों में कमी करती है प्राकृतिक कृषि।
1: जी जी।
2: हम देखते हैं कि आंकड़ों के अनुसार यह पद्धति प्रमुख फसलों की कृषि लागत को लगभग 5-10% तक तथा कुछ मामलों में 20-55% तक कम कर सकती है, जबकि फसलों

0: पशुधन और पेड़ों की एकीकृत करने वाली विविधीकृत प्राकृतिक कृषि प्रणाली पारंपरिक एकल फसल प्रणाली की तुलना में 20 से 40% अधिक शुद्ध आय प्रदान कर सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, अपने पंच भैया जानू चाह रहे होंगे प्राकृतिक खेती में कौन कौन सी फसलें होते हैं या जो विधि कौन सी होते हैं जिसे प्राकृतिक खेती करी जा सकते हैं, अपन जी सो बताओ थे।
0: जी सर, हम प्राकृतिक खेती में सभी तरह की फसलों का उपयोग कर सकते हैं, फसलें लगा सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर फसल नहीं है, क्योंकि हम इसमें जो हम बेसिक मेथड का यूज कर रहे हैं वो पारंपरिक तरीके से यूज कर रहे हैं, तो इसमें फसल की कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें हम सभी फसलों का यूज कर सकते हैं पारंपरिक खेती।
1: जी जी, प्राकृतिक खेती कैसे करी जाती है और कौन कौन इसकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं जी सो बताओ थे।
0: सर, प्राकृतिक खेती के लिए बढ़ावा देने के लिए या प्राकृतिक खेती करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है हम उस तरीके को उसी चीज को हम यूज कर सकते हैं। हम रासायनिक उत्पादों की बजाय हम जो हमारे बेसिक जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में, उन चीजों का यूज करके हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं।
1: जी जी, इनके प्रमुख घटक सो जानो चाहें डॉक्टर साहब।
0: सर, इसके लिए भी हम देख सकते हैं, जैसे कि हम जीवामृत यूज कर सकते हैं।

0: ये फसलों का उपयोग कर सकते हैं, फसलें लगा सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर फसल नहीं है, क्योंकि हम इसमें जो हम बेसिक मेथड का यूज कर रहे हैं वो पारंपरिक तरीके से यूज कर रहे हैं, तो इसमें फसल की कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें हम सभी फसलों का यूज कर सकते हैं पारंपरिक खेती।
1: जी जी, प्राकृतिक खेती कैसे करी जाती है और कौन कौन इनकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जी सो बताओगे।
0: सर, प्राकृतिक खेती के लिए बढ़ावा देने के लिए या प्राकृतिक खेती करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है हम उस तरीके को उसी चीज को हम यूज कर सकते हैं। हम रासायनिक उत्पादों की बजाय हम जो हमारे बेसिक जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में, उन चीजों का यूज करके हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं।
1: जी जी, इनके प्रमुख घटक सो जानो चाहें डॉक्टर साहब।
0: सर, इसके लिए भी हम देख सकते हैं, जैसे कि हम जीव अमृत यूज कर सकते हैं, बीजामृत यूज कर सकते हैं, इसके अलावा जो मल्चिंग रहती है, जो मिट्टी की सूखी घास रहती है, पत्तियां रहती है, अवशेष रहते हैं, उनको अभी यूज करके हम प्राकृतिक खेती का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मिट्टी में जल वायु का संतुलन बनाए रखता है, उन सब चीजों का यूज करके भी हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं।
1: जी जी, जैसे अपन ने बताओ है बीज अमृत, अपन ने बताओ है जीव अमृत बताओ है, तो इके लाने का कछु बनावे के लाने अपने पंच भैया करें जिससे उनकी खेती में जी काम आए।
0: जी, इसी चीज के लिए हम जीव अमृत में जैसे अब गोबर या गोमूत्र या गुड़ बेसन या मिट्टी के जैसे जैविक खेल को घोल को जो पौधों को पोषण देते हैं उनका यूज करते हैं। ऐसे ही सब बीजामृत भी हम बीजों को रोग मुक्त और स्वस्थ बनाने के लिए बीजोपचार की प्राकृतिक विधि का यूज कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, सरकार भी प्राकृतिक खेती का बढ़ावा देवे के लाने काम कर रही है, तो का कछु अपन कहो चाहो कौन कौन सी योजनाएं भी चल रही हैं या कैसे सरकार प्राकृतिक खेती के लाने अपने पंच भैयन के लाने काम कर रही है, कौन कौन राज्य में जब प्राकृतिक खेती अपनाई जा रही है और कैसे इसके अधिक से अधिक लाभ दृष्टिगत हो रहे हैं।
0: जी, इसमें सरकार भी बहुत बहुत मतलब एक्टिव तरीके से काम कर रही है। इसके लिए सरकार के द्वारा कई सारे राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा कई सारे प्रशिक्षण केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र भी चलाए जा रहे हैं जिससे किसानों को प्राकृतिक खेती के फायदों से अवगत कराया जा सके और जिससे वो किसान उस चीज को अडॉप्ट कर सके, उस चीज को अपना सके जिससे उनका अधिक से अधिक फायदा हो सके।
1: जी जी, सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं जो अपने पंच भैया लगाउते हैं, तो उनमें का कछु प्राकृतिक रूप से भी अपन उत्पादन ले सकते हैं अपने पंच भैया का, सो बताओते।
0: जी जी जी जी, इनमें तो बहुत अच्छे तरीके से प्राकृतिक खेती का यूज किया जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था प्राकृतिक खेती के बारे में ही कि प्राकृतिक खेती का स्टार्टिंग पॉइंट ही वो होता है कि हम एग्रीकल्चर वेस्ट या जीवामृत या बीजामृत का यूज करके कर सकते हैं, तो हम इसे अपने गार्डनिंग में भी बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम जो अपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उस चीज का उत्पादन ले सकते।
1: जी जी, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने पंच भैया सो बताऊती।
0: प्राकृतिक खेती को ध्यान में करने के लिए सबसे पहली तो बात ये रहती है कि इसका जो बेसिक है कि हम रासायनिक उत्पादों से हमेशा दूर रहें, रासायनिक उत्पादों का उसमें यूज नहीं करते हैं। इसमें जो भी चीज हम यूज करते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का, हमारे जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उस चीज का यूज करते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज हम देखते हैं कि जो हमारे सिंथेटिक जो भी हमारे उर्वरक है उस उर्वरक का हम यूज नहीं करते हैं।
1: जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप तो महत्वपूर्ण जानकारी अपने पंच भैया का मिलाई गई हुई है, संगे संगे प्राकृतिक खेती के अपने स्वास्थ्य के लाने का कछु लाभ है अपन सो बताओ अपने पंच भैया के।
0: प्राकृतिक खेती के बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राकृतिक खेती से उत्पन्न अनाज और सब्जियां रसायन मुक्त होती हैं, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि कई सारी वैरायटीज है जो अभी हाइब्रिड वैरायटी आती है, उनमें न्यूट्रिटिव वैल्यू उतनी नहीं रहती जितनी हमारे जो नेचुरल फार्मिंग से करते हैं, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो उस तरीके से हम देखते हैं कि स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा लाभ करते हैं। इसके अलावा किसानों की आय में भी वृद्धि करता है, क्योंकि इसमें जो हम रासायनिक उत्पादों का यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसमें जो हम एग्रीकल्चर उत्पादों का ही यूज कर रहे हैं, तो उससे किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकती है। और मैंने जैसे और बताया था कि पर्यावरण को तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सहायता कर ही रहा है, ये उस तरीके से भी हर तरीके से हम देखते हैं कि ये फायदेमंद साबित होगा किसानों।
1: जी जी, प्राकृतिक खेती में अपने और पंच भैया भी किसानन को सहयोग कर सकते हैं जिससे उन्हें भी काम मिल सकता है, उन्हें भी रोजगार का मिल सकता है।
0: इस फील्ड में तो गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि किसान इस दिशा में और अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी सब्सिडी स्कीम भी चलाई जा रही है जिससे किसान इस क्षेत्र में और प्रोत्साहित होकर काम कर सकते।
1: तो देखो पंच भैया हरो, आज अपन एक महत्वपूर्ण विषय लेकर अपने बीच आए थे, भारत में प्राकृतिक कृषि का मुख्य धारा में समावेशन, ई विषय पर अपन जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सागर नागवंशी जी। अपन ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, अपन प्राकृतिक तरीका से खेती करो और इसे स्वास्थ्य पे भी अधिक से अधिक अपन लाभ मिले, संगे संगे इसकी मार्केट में अच्छी कीमत भी अपन को मिले थे, तो जरूर अपन भारत में अपने क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करें, अपन खुद ही करें और संगे संगे दूसरन का भी प्रेरित करें। तो डॉक्टर साहब आज अपने बीच में आए, अपन ने तीनों जानकारी दी, अपन का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: भैया।

0: देखो, अभी अपन सबने सुनी भेंटवार्ता। भारत में प्राकृतिक कृषि का मुख्य धारा में समावेशन विषय पर डॉक्टर सागर नागवंशी से बातचीत। तो भैया बहनों, जो डॉक्टर साहब ने बातें बताई हैं, वे जरूर अपन खां अपने जीवन में उतारने हैं, यानी खेती में करने हैं। कैसे हैं जोन किसान भैया आ रहे हैं, देखो प्राकृतिक तरीका से खेती करें तो निश्चित देखो उन्हें आय में वृद्धि हुई है। अब आय में वृद्धि कैसे हुई है, कैसे है, देखो ऐसे हुए कि अपन जो रसायन डाल रहे हैं उनमें पैसा तो लगता ही है। अगर बिना रसायन के अगर खेती करें तो अपने पैसा की बचत हुई है, यानी आय अपनी वृद्धि हुई है। सभी तो नहीं, लेकिन कछु किसान भैया अपने खेतन में दे रसायन। तो भैया इसे का होते है, एक तो जो खेतन की माटी को स्वास्थ्य है वो खराब होते है, संगे संगे अपन जो अनाज अपने शरीर में ग्रहण करते हैं तो अपने शरीर के अंदर कई तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो अपन जब प्राकृतिक तरीका से खेती कर भी तो देखो अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहे है और अपनो पज में अच्छी वृद्धि हुई है और अपन हमेशा स्वस्थ रहे हैं। तो हमारे किसान भैया बेनहरा निश्चित ही को लाभ उठा है और हम अपन से आगे भी चर्चा कर भी इके पहला थोड़ा सा रोकत है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

0: भैया बहनों, अपन सबका समय को हमेशा सदुपयोग करने हैं। कैसे एक बार समय निकल गया तो जीवन में कभी दोबारा नहीं आउत है। इसे हर काम अपन सबका समय समय पर जरूर करने हैं। काल के ऊपर नहीं टालने, कैसे काल कभी नहीं आउत है, तो ई बात को ध्यान देने हैं। और भैया आज है सोमवार, आज के दिन हम सभी भैया बहन का रमतुला कार्यक्रम सुनवाऊत है, निश्चित बात हेरे हुई है। तो अपने सभी भैया बहन ने सुना रमतुला कार्यक्रम, श्रोताओं के फोन कॉल्स, ईमेल और पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम। प्रस्तुति है रविन्द्र कुमार प्रजापति। रमतुला कार्यक्रम सुनवे वाले सभी भैया बहनन खां अपने भैया पुष्पेंद्र कुमार वर्मा की राम राम। देखो भैया, अपने ये रमतुला कार्यक्रम की वेरा भाई और हम अपन सबको मन पसंदीदा कार्यक्रम रमतुला लेके हाजिर हो गए। ई कार्यक्रम को प्रसारण प्रत्येक सोमवार खां ग्राम सभा में अपन सब जन सुन सकत है। ई के लाने अपन खां जोन फोन कॉल्स लगाने हैं वे प्रत्येक सोमवार खां दिन में 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक अपन सब जने फोन लगा सकते हैं। इकेला ने हमारे जो फोन नंबर है वे है 241588 और दूसरा नंबर है 2980 29। छतरपुर से बाहर के भैया हमारा एसटीडी कोड नंबर लगा वो न भूले। छतरपुर को एसटीडी कोड नंबर है 076782। और भैया देखो जे भजन लगे अपन सब जन की फोन। तो भैया बहन रहो, हम अपन सबका सुनवा रहे हैं लोक भजन, जिये गा रहे हैं रामनाथ अहरवार। ई लोक भजन सुनवे के लाने आए भैया कछु फोन कॉल्स।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहे सर जी, मनोज नामदेव। सर जी आज सुनना है रामनाथ अहरवार जी की आवाज में है सर जी, सुनना है सर जी।
2: हम जंतपुरा पनवाली जिला महोबा उत्तर प्रदेश से देवी दीन अहरवार बात कर रहे हैं सर जी। पहले नंबर का सुनवा दीजिए रामनाथ अहरवार जी की आवाज में।
3: है भैया योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़, रामनाथ अहरवार जी के स्वर में सुनवा देंगे।
4: उत्तम सिंह बघेल ग्राम राजगढ़ तहसील करेरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर।
5: सर रामनाथ अहरवार की आवाज में पहले नंबर का लोकगीत सुना दो सर।
6: हम वर्मा जी, हम श्रीराम रेडियो श्रोता संघ भौमरी कलां जिला टीकमगढ़ से पाठकबूल है। पहले नंबर को सुनवा दो रामनाथ अहरवार की आवाज में सुनन चाहू।
7: सर जी मैं ग्राम तरसवा जिला मुरैना से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ। सर जी प्रथम नंबर पे रामनाथ अहरवार के स्वर में लोक शैलीबद्ध गीत सुना देना।
0: इके लाने कछु ईमेल और चिट्ठियां सुनी आई हैं। भैया जो चिट्ठी आई है ग्राम पोस्ट खन्ना जिला महुआ उत्तर प्रदेश से लिखने वाले भैया बहन है ओम प्रकाश नामदेव, श्रीमती पुष्पा नामदेव, कुमारी मेघा, घटा रंभा, परी, भूमि नामदेव, श्रीमती वर्षा, शिल्पा, अलका नामदेव और इतनी से भैया हैं ज्ञानेश गुप्ता, ध्यानेश गुप्ता और रामलखन गुप्ता। तो भैया बहनों अपन सब जन ने सुनो जो लोक भजन, जिये गा रहे हैं रामनाथ अहरवाल।

0: भैया बहन रहो,
1: भैया बहन रहो,
0: सबने सुनो
1: सबने सुनो लोक भजन।
0: जिये गा रहे थे रामनाथ अहिरवार, और अब हम अपन सबका सुनवा रहे हैं हास्य लोक रचना। जिये गा रहे हैं अशोक कुमार दुबे। ये हास्य लोक रचना सुनने के लाने आए भैया कछु फोन कॉल्स।
2: मैं जिला पन्ना मध्य प्रदेश से एके पांडे बात कर रहा हूँ। मुझे लोकगीत गायक अशोक कुमार दुबे के सर में हास्य गीत सुनना है।
3: सम्मान नाम दे बोले ग्राम पोस्ट दे जिला प्रतापगढ़ सर, आप सुनना है अशोक कुमार दुबे का लोकगीत।
4: सर मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से। हाँ सर हमको दो नंबर का गीत सुना दीजिएगा, अशोक कुमार दुबे का है, हास्य लोकगीत है।
5: सर जी हम ग्राम पुष्ट तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से सर मेहरबान सिंह नागल बोल रहे सर जी। जी सर तो हमें अशोक कुमार दुबे की आवाज में सर दूसरे नंबर का लोकगीत सुनवा दो सर।
6: मैं ग्राम पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से पूजा वर्मा बात कर रही हूँ। मुझे अशोक कुमार दुबे की आवाज में लोकगीत सुनना है।
7: अशोक कमल नामदेव ग्राम पोस्ट पापेर तहसील साहेगढ़ जिला सागर मध्य प्रदेश से बोले सर जी। अशोक दुबे की आवाज में लोकगीत सुनना है।
8: मैं ग्राम भवरी कला जिला टीकमगढ़ से लकी पाठक बात कर रहा हूँ सर। मुझे सुनवा दीजिए सर अशोक कुमार दुबे की आवाज में।
0: ई के लाना कछु ईमेल और चिट्ठियां सुई आई हैं। जो चिट्ठी आई है ग्राम गुना वार्ड नंबर 15 तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से लगभग वाले भैया बहन है राजा राम अहिरवार, राधेलाल अहिरवार, प्रवीण अहिरवार, श्रीमती शारदा, कुमारी दीपा, सीमा, नीसू और राखी अहिरवार। तो भैया बहनों अपन सब जने सुनो जहाज से लोक रचना। जिये गा रहे हैं अशोक कुमार।

0: भैया बहनों, अबे अपन सबने हास्य लोक रचना सुनी, जिये गा रहे थे अशोक कुमार दुबे। और भैया बहनों, अब हम अपन सबका सुनवा रहे हैं साक्षरता के ऊपर जा लोक रचना, जिये गा रहे हैं राजू पटेल और साथी। इस साक्षरता लोक रचना हाँ सुनवे के लाने आए भैया कछु फोन कॉल्स।
1: जिला सागर तहसील बंदा मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं चरण सिंह। राजू पटेल के साथी का लोकगीत सुनने हैं सर।
2: जी सर, रामपुर जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रहे हैं। हमें तीसरे नंबर का सुनना है राजू पटेल।
3: मोहम्मा होगा मोहल्ला हवेली दरवाजा से छोटू साहू बोल रहे हैं। सर जी हमें आज तीसरे नंबर का लोकगीत सुनना है राजू पटेल की आवाज में साक्षरता लोकगीत।
4: हाँ मुझे सुनना है सर राजू पटेल और उनके साथी का। मैं ग्राम पोस्ट बरेठी से बोल रहा हूँ तुमने हरवार।
5: हम ग्राम पोस्ट गोना कुसमार थाना सोयना तहसील मैनोनी जिला ललितपुर से आपका प्राणी में सोचा कैलाश नारायण नाम दे बोल रहे।
6: जी सर, आज हमको सुनना है राजू पटेल के सर साक्षरता लोग भी सबको सुनना है।
7: आज हम बोल रहे हैं हमें राजू पटेल को सुनवा दो सर।
8: ग्रामपुर जिला छतरपुर से नीति पटेल बोल रहे सर। राजू पटेल तीसरे नंबर का लोग की सुनना है सर।
9: मैं वीरेंद्र कुमार शुक्ला अपने गांव रतुआ से बात कर रहे हैं। मुझे आज राजू पटेल व उन साथियों का तीसरे नंबर का लोग की सुनवा दो।
0: ई के लाने कछु चिट्ठियां ईमेल सो आई है। जो चिट्ठी आई है ग्राम अमलेश्वर से लिखने वाले भैया बहन है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तानी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। तो भैया बहनों, अपन सब जने सुनो जा साक्षरता के ऊपर जा लोक रचना, जिये गा रहे हैं राजू पटेल और साथी।

0: ये बनारो अंत में हम अपन सबका सुनवा रहे हैं बाल गीत जी ये गा रहे हैं जयंत विश्वकर्मा। ये बाल गीत सुनने के लाने आए भैया कछु फोन कॉल्स।
1: जी मैं ग्रामा पोस्ट गोना कुसमाड़ थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो में दीपक कुमार नामदेव बात कर रहे हैं। आज हमको चौथे नंबर पर है जयंत विश्वकर्मा जी की आवाज में बोवाला लोग भी सुनवा देना।
2: ग्राम पनवाड़ी जिला महुआ से सुनीता हेवाल बात कर रही हूँ सर। चौथे नंबर का सुनना है जयंत विश्वकर्मा की आवाज।
3: हम ग्राम पोस्ट बेरी जिला छतरपुर से मंजू नामदेव बात कर रहे हैं। जयंत विश्वकर्मा की आवाज में लोग गीत सुनने।
4: ग्राम पापड़ से बोला प्रकाश नामदेव जयंत विश्वकर्मा की
5: आवाज। मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ मनकारी से। मुझे जयंत विश्वकर्मा जी की आवाज में लोग गीत सुनना है।
6: हम ग्राम बमोनी कला जिला टीकमगढ़ से दीपेश साहू कर रहे बात सर। मुझे सुनवा दीजिए जयंत विश्वकर्मा की आवाज में चौथे नंबर का।
0: ई किला में कछु ईमेल और चिट्ठियां सुनी आई हैं। जो चिट्ठी आई है ग्राम दुर्गापुर पोस्ट बड़ेरा तहसील पिछौर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से लिखने वाले भैया बहन है मानसिंह आदिवासी मीना आदिवासी बिटिया बेसनबी मोहन मोहिनी सरस्वती गोदावरी भावना पुष्पा महक राहुल कुमार राजकुमार सत्येंद्र कुमार सुनीता और हर विलास आदिवासी। तो भैया बहनों अपन सब जन सुनो जो बाल गीत जिए गा रहे जयंत विश्वकर्मा।

भैया भाई मेरो अबे अपन सबने सुनो जो बाल गीत जिए गा रहे थे जयंत विश्वकर्मा। और भैया बहनो अब हम अपन सबका बता दें अगले रमतुला कार्यक्रम की झलकियाँ। कार्यक्रम की पहली झलकी है हरदौल गाड़ी से, जिए गा रहे हैं देवी प्रसाद अग्रवाल।

और भैया बहनों एक के संगे आज को हमारा तुला कार्यक्रम पूरा भाओ। हाँ भैया बहन हरो अबे अपन सबने सुनो रमतुला कार्यक्रम श्रोताओं के फोन कॉल ईमेल और पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम प्रस्तुति थी रविंद्र कुमार प्रजापति जी की। और भैया बारी आउ थे आज की सीख की, आज हम बात कर भी जान के लाले पड़ना। भैया हरो जो हिंदी भाषा को प्रसिद्ध मुहावरा है इको अर्थ जोई है कि अपने प्राण संकट में होना या अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाना। जब कोई भी व्यक्ति कोनो भी गंभीर मुसीबत या जानलेवा खतरे में फंस जात है तो ऊ स्थिति में अपन सब ई मुहावरा को उपयोग करत है। जैसे प्राकृतिक आपदा में भूकंप के दौरान जब बहुमंजिला इमारतें हिलन लगी तो अंदर फंसे लोगों की जान के लाले पड़ गए। इसे अपन सबका ये सीख मिलत है कि अपन का परेशानी में बिल्कुल घबराने नहीं है, ऊ को हिम्मत जुटा के सामना करने है, तभी अपन सब जने सफल हो सकत है। और भैया भोरी चलबे की बिरा चलबे से पहला सभी भैया बहन का कल के कार्यक्रम शुरू बता दे जाए। कल घनी कार्यक्रम में सभी भैया बहन ने सुना लोकमंजरी कार्यक्रम श्रोताओं के पत्रों ईमेल पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम और काव्य पाठ सुने लोकेश कुमार से। आज की सीख में सुने जैसे ही हम वैसे ही तुम भी, ऊसे ही मिले खसम भी। अपनो तपनो बतकाव हुई मनोरंजन हुई, तब तक अपने बिरजू भैया आज्ञा दो पंचो राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्राम सभा कार्यक्रम। मीडियम ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कार्यक्रम सुर्खियों में थोड़ी ही देर में होगा भोपाल से।
1: कार्यक्रम सुर्खियों में

0: Sergio Med.
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, नॉर्डिक देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों का नया युग पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। प्रोफेसर सचदेवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी शुक्रिया।
1: प्रधानमंत्री अपने 5 देशों के चौथे चरण की यात्रा में आज नॉर्वे पहुंचे। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गहर स्टोर से भी बातचीत की और कल 3rd इंडिया नॉर्डिक समिट में भी भाग लेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं कि संयुक्त प्रेस वार्ता में नॉर्वे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी से लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच आज हो रहा एमओयू हमारे स्पेस कोऑपरेशन को भी नया आयाम देगा। भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। हमें बहुत खुशी है कि नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। आर्कटिक से आउटर स्पेस तक, ग्रीन शिपिंग से ब्लू इकोनॉमी तक, एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर फूड सिक्योरिटी

0: भीतर हमारा सहयोग नए फ्रंटियर्स को छू रहा है।
1: कौशल सचदेवा, जैसा कि आज हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने खास करके ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर काफी बल दिया है। प्रोफेसर सचदेवा, हम यहाँ समझना चाहेंगे कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आखिर होता क्या है।
2: जी, ये इनफैक्ट जैसे आप देखें, ये पूरे दौरे के अंदर, इससे पहले प्रधानमंत्री स्वीडन में भी थे, उससे पहले नीदरलैंड में थे, अभी नॉर्वे में है, आज द्विपक्षीय बात हुई है, कल उनकी जो है इंडिया नॉर्डिक समिट होगी। इस सारे दौरे के दौरान बार बार ये जो बात उभर के आ रही है ग्रीन ट्रांजिशन की, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हमने जैसे नॉर्वे के जो हमारी संबंध है उनको एलिवेट करके ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बदल दिया है। इससे पहले हमारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेनमार्क के साथ भी थी, और पिछले दो देशों में जहां इन्होंने दौरा किया था, स्वीडन में और नीदरलैंड में, वहां पे भी पार्टनरशिप को ऊपर करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा वहां पे दे दिया गया है। तो इस पूरे संदर्भ में मुझे लगता है कि भारत का जो दृष्टिकोण है यूरोप की तरफ, वो पहले से काफी बदल गया है, और हमारा जो लक्ष्य है 2047 का, जब हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, उसमें मुझे लगता है भारत एक यूरोप को और यूरोप के अलग अलग देशों में उनकी शक्ति को पहचानते हुए, किसकी कॉम्पिटेंसी किस चीज में ज्यादा है, उसमें उनके साथ उसी टाइप की साझेदारी हम बना रहे हैं। और उस पूरी जो आने वाले 20 साल में हमको खासतौर से जो व्यापार है, निवेश है, तकनीक है, ग्रीन ट्रांजिशन है, उसमें भारत, ये सारे यूरोप के जो देश है, मुझे लगता है वो काफी उसमें हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे नॉर्वे की खास बात करें, नॉर्वे में हालांकि आप जानते हैं कि उनके पास बहुत ही तेल के और गैस के भंडार हैं, उसके बावजूद भी वहां पे जो उनकी अपना बिजली जो खपत है 80% जो है वो सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक वहां से आता है, तो भंडारण होने के बावजूद भी वो काफी जो है अपनी ग्रीन एनर्जी की काफी तवज्जो दे रहे हैं, और यही बात पूरे नॉर्डिक के देशों की भी है और पूरे यूरोप के देशों की भी है। तो इनफैक्ट जो अभी हमने 3 महीने पहले जब भारत और यूरोपीय संघ की जो समिट दिल्ली में हुई थी, उसमें भी जो 2030 का हमने जो एक पूरा रोडमैप बनाया था, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्तंभ जो उसका 2030 का भारत और यूरोपीय संघ का है, वो भी ग्रीन ट्रांजिशन वाला है, ग्रीन एनर्जी की पार्टनरशिप का है। अगर क्लाइमेट चेंज की जो बात है, वो पूरी दुनिया की इकट्ठी बात है, वो ऐसा नहीं है कि नॉर्वे में कुछ हो रहा है उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा, और जो हमारे यहीं भारत के अंदर जो भी कुछ होगा उसका असर भी पूरी दुनिया के अंदर होगा। तो किस तरीके से दोनों देश जो है वो मिलके इस पूरी समस्या को सुलझा सकते हैं, क्योंकि वहां से उनके पास कई तकनीक है जो उन्होंने डेवलप की है, सस्टेनेबल मॉडर्नाइजेशन की, सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन की, और एनर्जी को कैसे एफिशिएंटली यूज करना है और कैसे उसको ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। तो वो सारी जो चीजें और जो सारी पॉलिसीज जो ये सब लोग, सब कंट्रीज और खासतौर से नॉर्डिक के देश और नॉर्वे जो है वो अपने देश में अपना रहे हैं, मुझे लगता है हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी लगता है कि उससे भारत काफी फायदा उठा सकता है। और उन टेक्निक्स को अगर हम भारत में लाते हैं, तो एक तो यह है कि वहां की कंपनीज को भी उससे फायदा होगा, क्योंकि उनको एक बड़ा स्केल यहाँ पे उसको बढ़ाने के लिए मिल जाएगा। और भारत उसको, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि हम नॉर्वे के साथ खासतौर से ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, और कई ऐसी चीजें हैं, उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ग्रीन टेक्नोलॉजी, अगर उनकी तकनीक और हमारे उसको बड़े तरीके से कैसे तीसरी दुनिया के देशों में वही तकनीक को हम यहाँ पे लागू कर सकते हैं, तो उसको और देश भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से पूरी जो ग्रीन ट्रांजिशन है जो बदल रहा है दुनिया, और इसके अंदर भारत यूरोप को और खासतौर से नॉर्डिक के जो देश है उनको अपना एक अच्छा साझेदार मानता है, और उनको भी लगता है कि भारत के साथ जो हमारी ये साझेदारी है ये काफी फायदेमंद है सबके लिए।
1: स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से हम बात करें अगर आर्थिक साझेदारी की, तो इस पे भी प्रधानमंत्री ने काफी बल दिया है, और हाल में ही इंडिया एफ्टा ट्रेड अग्रीमेंट जो साइन हुआ, टेपा अग्रीमेंट जो साइन हुआ, इस पर भी प्रधानमंत्री ने बात की। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से प्रोफेसर सचदेवा, अगर हम आर्थिक साझेदारी की बात करें, तो आप कैसे देखते हैं कि भारत और नॉर्वे के बीच में किस तरह से, और खास करके आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में अगर हम कहें, तो किस तरह का एक सिनेरियो आप डेवलप होता देख रहे हैं?
2: भारत और यूरोप के बीच में जो संबंध हमारे रहे हैं दशकों से, उसका सबसे बड़ा जो मुख्य बिंदु है, कोर, वो आर्थिक संबंध हमारे उनके साथ रहे हैं। इसीलिए जो है व्यापार का, निवेश का, तकनीक का एक बहुत बड़ा उसके अंदर हिस्सा है, और 2007 में जो है हम

0: क्षमताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे।
1: कौशल सचदेवा, प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा और खास करके नॉर्डिक देशों की यात्रा की बात अगर हम कहें तो आप इसे कैसे देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये?
2: यूरोपीय देश आप जानते हैं कि पूरा उनका अपना एक समूह है 27 देशों का। उसके अलावा और दूसरे यूरोप के देश है जो दूसरे तरीके से इस यूरोपीय संघ के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम एक तरीके से पहले तो हमने यूरोपीय संघ के साथ अपने आप को मजबूत किया और उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है। उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक तरीके से जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, हमारे द्विपक्षीय संबंध है, तो उसको अलग अलग देशों के साथ उसको हम पहले से और एलिवेट कर रहे हैं। तीसरे तरीके से एक जैसे कोई ग्रुप है, समूह है, जैसे नॉर्डिक का अपना समूह है और प्लस के तौर पे हमने नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कंक्लेव भी करते हैं जिसमें नॉर्डिक और बाल्टिक के जो 3 देश है उनके साथ भी बातचीत करते हैं। इस तरीके से जो पूर्वी यूरोप के देश है उनके साथ अलग से भी, तो अलग अलग तरीके से कैसे सबके साथ कनेक्ट करें, जहां पे जिसकी जो कॉम्पिटेंसी जहां पे हम कर सकते हैं, तो यूरोप तरह से समझते हुए हम अलग तरीके से, जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है वो आपको यूरोपीय संघ के साथ करना पड़ेगा, अगर माइग्रेशन मोबिलिटी की बात है वो आपको बायलैटरली उसकी ट्रीटीज करनी पड़ेगी। भारत एक अच्छा साझेदार आने वाले सालों में हो सकता है।
1: प्रोफेसर सचदेवा, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
5: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म खामोशियां का ये गीत। गीत लिखा था रश्मि सिंह ने और संगीत दिया था जीत गांगुली ने।

मैकी डोनर फिल्म का गीत आयुष्मान खुराना की आवाज में। गीत लिखा है आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली ने, संगीतबद्ध किया है रोचक कोहली ने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे

फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं रुस्तम फिल्म का गीत। आतिफ असलम की आवाज है, मनोज मुंतशिर के बोल और संगीत आरको का।

फिल्म संगीत आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। आइए अब सुनवाते हैं आतिफ असलम और अलीसा चिनाई की आवाज में इरशाद कामिल का लिखा गीत, संगीत प्रीतम का है। फिल्म है अजब प्रेम की गजब कहानी।

राज फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार संध्या अब हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ

0: हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
0: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
1: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, एआई साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉ सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉ जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थान

स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराडे जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112317181 और 0112317144 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन ले, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफी राज्यों में स्वगणना का पीरियड खत्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और एक महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान की हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
0: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
2: एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि उसमें खुद भी

0: ये दर्ज कर सकता है। और इसके लिए हमें क्या क्या अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए, तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया आपका वर्कर है। धन्यवाद।
1: धर्मवीर जी ने तीन सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
2: तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगणकों की जरूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पर स्टैम्प होगा, प्लस QR कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी QR कोड स्कैन कर सकते हैं। तो QR कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पर आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हालांकि हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं।
1: और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं?
2: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहां पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
1: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
3: नमस्कार जी, जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी,
3: सॉरी जी,
1: लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुंचा दूंगी।
3: जी जी, और मैं ये जानना चाहता हूं अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी, या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ 2-3 ही सवाल पूछे गए थे, और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो मैं पहला ऐसा शख्स कह रहे मिला है इसके बारे में भी।
1: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए।
2: जी, एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में, तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है। बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं, और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से, अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभावना नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एन्यूमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या DTH है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है SE.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं, और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
2: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि हम

0: किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं। तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ, जनगणना अधिनियम की सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को या हर एक परिवार के मुखिया को यह कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
1: जी अच्छा, अगर कोई व्यक्ति मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
0: बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा, सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है, यानी जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी। उसके अदर फैमिली मेंबर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेंबर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहां पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
1: जी, और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी।
2: नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार।
2: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
0: नमस्ते। प्रणाम।
2: मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? भाई छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
0: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि आरटीआई में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहां पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
1: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश चली बोल रहा हूँ। और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
0: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर QR कोड होगा, QR कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारे डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
1: रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
0: जी तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोड तो नहीं है बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी 2027 में होगा, तो हो सकता

0: अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहां पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं
1: जी। अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
0: ये प्रगणक देता है और नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं एनुमरेशन ब्लॉक हम जिसको कहते हैं, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
1: ठीक है, और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते तो उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है? उनको क्या जनगणना करानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता। तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहां पे उसकी गिनती होती है। तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पे रह रहे हैं।
1: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
3: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा अभी ज्वालियागढ़ मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
1: जी नमस्कार।
3: हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्ते
3: जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ जी, जो जनगणना है हमें सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
0: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, और कितनी रखी जाएगी इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी, क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पे डेटा रिलीज करते हैं।
1: और अभी कॉल इसने हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधु अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते हैं और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंट किया जाएगा?
0: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं, या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं, तो इसमें कोई भी हो अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं 3-4 दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जहां पे रहती है वहां पे उसका उसको गिना जाएगा।
1: अच्छा, और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
5: नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार।
5: आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय आपको नमस्कार।
0: जी नमस्ते।
5: मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे देख के अगर स्वगणना की आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा, उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वो ऐसे किस तरह से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
0: जी तो

0: से मैंने कहा स्वगन्ना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं, 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं रहते हैं, तो प्रगनक को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगनक को काफी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं, 3-4 दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोस दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगन्ना की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे तो वो प्रगनक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी की, स्लम और जेजे क्लस्टर बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
0: जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा एक प्रगनक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं, उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है
1: जी।
0: जो बेघर होते हैं बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कम्प्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे, तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है
1: जी। तो श्रोताओं, अब आपके सवाल जो है वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेजी से ये काम चल रहा है, जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331-0481 पर और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371717 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
0: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनको अपनी भाषा में समझाना, उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है, जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है
1: जी। अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे
1: जी।
0: लेकिन आप देख सकते बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती
1: जी।
0: है, तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ था, क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी।
2: हाँ जी, हमारे 2 मकान, एक तो गाँव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है,

0: तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
1: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी। और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा। जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
2: हाँ अनुशाली, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यहां पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गांव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहां पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है जो जहां पे रहता है वहां पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में दो घर है, यहां पे एक घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप जहां पे रहते वहां पे आपकी गिनती होगी।
2: जी, और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमपी से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी।
3: जी, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान, आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है, तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
1: जी, तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊं तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज होता है उसका इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज्यादा यूज करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
2: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी
4: नमस्कार। मैम
2: नमस्कार।
4: सर जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईवन पंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
1: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को गिनते नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
2: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन डीबीटी के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
1: मकसद यही है क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है।
2: जी, और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
1: जी, जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करे इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियां बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह के जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल जरूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
2: जी बिल्कुल रुशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है, और आपका मकान गिना जाएगा तभी मकान तक

0: सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम में ही समाप्त करने की। नमस्कार।

एफएम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। मन भावन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सुनीता शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। ये पर्दा

0: अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में प्रेम भवन का लिखा गीत, संगीत दिया था रवि ने। फिल्म का नाम था एक फूल दो माली। इस गीत के लिए ईमेल प्राप्त हुए, ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मणिराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, रिंगवी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, गांव नथाना पंजाब से ये ईमेल आया है हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से ईमेल भेजने वाले हैं रोहित, जयलक्ष्मी, मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और शुभचंद्र, गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से ईमेल आया है राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा का, चंडीगढ़ सिटी से आप हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा, बागपत उत्तर प्रदेश से ये मेल आया है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया का, पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से ये मेल आया है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा का, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से ये मेल आया है मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद और मिफ्रा नवाज, में मिला है सनावत मध्य प्रदेश से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरि निवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, प्रभा कटारिया, कृष्णा विराज, अर्णव और काव्यांशी कटारिया का। छत्रपति संभाजी नगर से ये पत्र भेजा है राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से ये पत्र मिला है चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मास्टर मयंक, बेबी तनुप्रिया, कमलेश, विमलेश गौहर और इनके मम्मी पापा का। धाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर मट्टू, संगीता हर्षित और वैभव मट्टू का।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: आइए सुनते हैं मनभावन कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप सुन रहे थे तीसरी मंजिल फिल्म का गीत। आशा भोसले मोनोग्राफी की आवाज थी, मजरू के बोल और आरडी बर्मन का संगीत था। फरमाइशी ईमेल आप सभी के मिले। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा। बक्सर बिहार से ये मेल आया है शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरेत रमेश साहू का। डुमगांव बिहार से ये मेल आया है डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी का। पद्मा रॉकेट नेपाल नगर से ये मेल आया है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला

अभिन शाह और राजेंद्र जी शाह का। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, इन सभी का मेल हमें मिला। ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले का। मिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया जानवी और तप्तेश देवांगन इसी गीत को सुनना चाहते थे। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, लेबई से गुलाब दास मानिकपुरी और दत्तरेंगी से भागवत वर्मा। ये पत्र मिला है मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, रितु सिंह, लीलू और ऋषभ सिंह का।

पहले नादान। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। नक्श लाहिलपुरी का गीत था और संगीत दिया था खयाम ने। फरमाइश आप सबकी आई। ये मेल आया है नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर ऋषिका और रॉबिन राणा का। गांव जाखूत से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक का। अकोट से विनायक बेड़े, श्रीमती मंगला बेड़े, विजय शुभम बेड़े, पवन गिरी और संजीव डाबेराव। मुजफ्फरपुर बिहार से ईमेल आया है आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार का। राहुल नगर अमरावती से ईमेल आया सिद्धार्थ गोनाने, अर्चना ताई गोनाने, हिमा मरसेने, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोनाने का। नरोरा महुआ उत्तर प्रदेश से ये पत्र मिला है बलराम दास, श्रीमती कस्तूरी, कुमारी आराधना, सोनिका और उपमा का। भट्टीपुरा महाराजपुर जिला छतरपुर से इसी गीत को सुनना चाहते थे जवाहरलाल कुशवाहा, सोना कुशवाहा, रामचरण कुशवाहा, गिरिजा देवी और भगवान दास कुशवाहा। गांधी चौक बाड़मेर से इसी गीत को पसंद किया था भुवनेश पवार, डेनी पवार और मास्टर मनीष ने। प्रमीलागंज आलोर जिला रतलाम मध्य प्रदेश से ये पत्र मिला है बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल वर्मा और प्रियांश वर्मा का। ये पत्र मिला है मंडी बाजार जिला जालौन से प्रेम नारायण सोनी, सुनील सोनी, अभिषेक सोनी, ऋतिक सोनी, वंदना सोनी, राशि सोनी और समस्त सोनी परिवार का। ग्राम उड़गहन छत्तीसगढ़ से ये पत्र मिला है राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति का।

बातों बातों में इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज थी, अमित खन्ना का गीत था और राजेश रोशन का संगीत। फरमाइश आप सबकी थी। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से ईमेल आया है कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज और आयुषी का। भेड़ाघाट रोड जबलपुर मध्य प्रदेश से ईमेल मिला है अशोक सिंह, सुनीता सिंह प्यारी और गुड़िया वेदा सिंह का। ये पत्र मिला है तीन महुआ खापरखेड़ा से तुलसी राम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार साहू, आरती, ममता और गोमती का। मटिंडा रोड डबराली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग का। ये पत्र मिला है नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा का। उदयपुर राजस्थान से ये पत्र मिला है रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी, बाबू भाई और भारती देवी का। गौरीनगर इंदौर से ये पत्र मिला है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले का। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे चुपके चुपके फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे और एच डी बर्मन का संगीत। फरमाइश आप सबकी आई। ये मेल आया है ग्राम पोस्ट गोना कुतमार थाना सोजना तहसील मेहरौनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से। कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी नामदेव, रामदेवी नामदेव, ब्रजेश कुमारी, अखिलेश कुमारी और लखनलाल नामदेव का। हिंगोली महाराष्ट्र से ये मेल आया है शाहजी बोरखे, श्रीमती नंदा बोरखे, हनुमान बोरखे। अम्बेडकर चौक बाकोड़ी से ये मेल मिला है उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े का। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से ये मेल मिला है हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और मोखीलाल वर्मा का। ये पत्र मिला है खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, सत्या साहू, प्रतीक कुमार और मानस साहू का। गरौली जतारा जिला टीकमगढ़ से फरमाइश आई है चतुर्विज अहिवार, विनोद रानू, ब्रजेश संध्या, पूजा अनिकेत और रविन्द्र अंशिका के। सेक्टर 8 भिलाई नगर से ये फरमाइश भेजी है अशोक श्याम कुमार, दीपक श्याम कुमार, श्रीमती प्रमिला श्याम कुमार और ज्योति श्याम कुमार ने। ग्राम नगरलोड जिला धमतरी से ये पत्र मिला है फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन का। बोरसरा मेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा भैरवी, विनोद विभूति, अंशु बबुले और प्रियांशु साहू का। कपूरथला पंजाब से ये फरमाइश मिली है पंचम कुशवाहा, सपना कुशवाहा, हरिओम कुशवाहा, नीतू कुशवाहा और कमलेश कुशवाहा की। आइए मनभावन कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं।

आप सुन रहे थे मिली फिल्म का गीत। आवाज थी किशोर कुमार की, हसरत जयपुरी के बोल थे और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। फरमाई साहब सबके गांव चहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन मुस्कान और कुणाल। ये पत्र मिला है लेवाखेल मोहल्ला चांदर विश्वासी नारायण भाऊ खड़से, ललिता खड़से, परी खड़से, गणेश कार्तिक भाऊ खड़से, स्वाति चौधरी और प्रयाग चौधरी का। ये फरमाइश मिली है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, सुएब खान और नावेद खान के। ग्राम कटकाह जिला पन्ना से ये फरमाइश भेजी है प्रताप सेन, सविता सेन, प्रशांत, नेहा, अम्बरीश, कृष्ण और फ्रांसी सेन ने। गांव दुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, कुमारी संगीता, कुमारी सरिता साहू, नेतराम और भूपेंद्र साहू। इसी गीत को सुनना चाहते थे कोलपुर उदयपुर से गोपाल नैनवाया, कांता नैनवाया, गोपाल तंबोली, तिलक तंबोली, सक्षम तंबोली और गिरिराज सोनी। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे। आइए सुनते हैं अगला गीत।

आप सुन रहे थे राजकुमार फिल्म का गीत। मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जी किशन का संगीत। फरमाइश आप सबकी, ईमेल आ रहा है जिला

अहमदाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्मय लक्ष्य सोनी और मोहित रितिक का। नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से ईमेल मिला है नरेंद्र सुथार मनोज सुथार हिमांशु सुथार का। मेरठ कैंट से आप सभी हैं दिग्दर्शन कविता राधा रामदेव संजय ढिंगिया और संदीप मक्कड़। आदर्श नगर मलोट पंजाब से ये फरमाइश आई थी राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मेहंदी शर्मा सौरभ शर्मा साइना शर्मा और निवान शर्मा के। ग्राम खकल कोच तहसील जालौन से ये पत्र मिला दीपक गुर्जर सत्यम गुर्जर और उनके मम्मी पापा का। पटेल नगर मलोट पंजाब से ये फरमाइश भेजी रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया ने। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल नारायणी सिंगरौल उमेश सिंगरौल नेहा सिंगरौल एवं बेबी वान्या सिंगरौल ने। सारणी जिला बैतूल से फरमाइश आई अमित खातरकर निहारिका खातरकर शिवपाल यादव अनामिका अवंतिका शिवालिका पारसमणि पंजाबराव निवलामकर और संदीप पाटिल की। ग्राम पयोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र चंसौलिया सार्थक आदर्श और आलोकिक चंसौलिया की। आइए मनभावन कार्यक्रम का अगला गीत सुनें।

सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में शबनम फिल्म का गीत, उषा खन्ना का संगीत था, जावेद अनवर के बोल थे। अब आपको सुनवाते हैं लोफर फिल्म का गीत, आशा भोसले की आवाज है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है और आनंद बख्शी के बोल हैं। दोनों गीतों के मिली जुली फरमाइश इस तरह से है। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना, शेख बाहब, नूरजहां बेगम, शेख इकबाल। गुरु नानक नगर मलोट पंजाब से राजीव सेतिया, रजनी सेतिया, आरती सेतिया, तनीष सेतिया। छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं बैनी प्रसाद कुशवाहा, दौलत कुशवाहा, भवानी दीन कुशवाहा और राम रतन कुशवाहा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं विजयनगर छतरपुर से वशीम अहमद खान, शबनम खान, आयशा परवीन, शाहिद खान, अरमान खान और जीशान खान। आइए सुने ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए, विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले पांच वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।